0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नमः ॐ सहस्रशिरसे नमः ॐ जयरूपाय नमः ॐ सहस्रचरणाय नमः ॐ योगिहृत्कञ्जवासिने नमः ॐ सद्योजाताय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ सर्वदेवमयाय

अणिमादिगुणेशाय नमः। ॐ पञ्चब्रह्ममयाय नमः। ॐ पुरातनाय नमः। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ बलप्रमथनाय।

ॐ भूताय नमः, ॐ पञ्चभूतात्मने नमः, ॐ अनिर्विण्णाय नमः, ॐ तथ्याय नमः, ॐ पापनाशकराय नमः, ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः, ॐ मन्त्रिणे नमः, ॐ अनन्तरूपिणे नमः, ॐ सिद्धसाधकरूपाय नमः, ॐ मेदिनीरूपिणे नमः, ॐ अघण्यप्रथापाय नमः, ॐ सुधाहस्ताय नमः, ॐ श्रीवल्लभाय नमः, ॐ ईध्र्याय नमः, ॐ मधुराय नमः, ॐ उपाधिरहिताय नमः, ॐ सुकृतराशये नमः, ॐ मुनीश्वराय नमः, ॐ शिवानन्दाय नमः, ॐ रिपुघ्नाय नमः, ॐ तेजोराशये नमः, ॐ अनुत्तमाय नमः, ॐ चतुर्मूर्तिवपुस्थाय नमः, ॐ बुद्धीन्द्रियात्मने नमः, ॐ उपद्रवहराय नमः, ॐ प्रियसन्दर्शनाय नमः, ॐ भूतनाथाय नमः, ॐ मूलाय नमः, ॐ वीतरागाय नमः, ॐ नैष्कर्म्याय नमः, ॐ विरूपाय नमः, ॐ षट्चक्राय नमः, ॐ विशुद्धये नमः, ॐ कूलेशाय नमः, ॐ अवनिभर्त्रे नमः।

निष्क्रियाय नमः। ओम चंद्रकोटि सुशीतलाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम गूढ़स्वरूपाय नमः। ओम दिशांपतये नमः। ओम पराय नमः। ओम सत्यप्रतिज्ञाय नमः। ओम समस्ताय नमः। ओम समाधये नमः। ओम एकरूपाय नमः। ओम शून्याय नमः। ओम विश्वनाभिहृदाय नमः। ओम सर्वोत्तमाय नमः। ओम कुल्याय नमः। ओम प्राणीनां सुहृदे नमः। ओम अन्नानां पतये नमः। ओम चिन्मात्राय नमः। ओम ध्येयाय नमः। ओम ध्यानगम्याय नमः। ओम ध्यानरूपाय नमः। ओम शाश्वतैश्वर्य विभवाय नमः। ओम प्राणेश्वराय नमः। ओम सर्वशक्तिधराय नमः। ओम धर्माधाराय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम पुष्कलाय नमः। ओम वरिष्ठाय नमः।

हिरण्यगर्भपुत्राणां प्राणसंरक्षणाय नमः। ॐ दुर्वाससे नमः। ॐ षड्विकाररहिताय नमः। ॐ देहार्धकान्ताय नमः। ॐ षडूर्मिरहिताय नमः। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ भवनाशाय नमः। ॐ ताम्राय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurveda, Madhyandina Shaka, Adhyayam 37.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ममुखेष्मश्रोणि न व्याघ्रलोमा केशानशीर्षन्यशासे श्रियैशिखासिज्ञेहस्य लोमद्विषीरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मन्भिषजात।

0: इति एकविंशोऽध्यायः।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्र मथाशिष्यं श्री शंकराचार्य मथाश पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। ओम शांति।

आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी, इसका प्रसंग चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत ये कार्यक्रम 16 तारीख से 29 तारीख तक सायं 5:30 से 7 बजे तक का इस कार्यक्रम के आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी की 71वां श्लोक आरूढ़ भक्त

युक्तै शिवस्मरण बाण गणैरमोघ निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधिन्द्र।

ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमप्रदेशम् भित्वा महाबलिभिवीरीश्वर नाम मन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्मं ह्यते शिवते कृतार्थः भूदारतामुदवहाद्यतदपेक्षया श्री भूदारयेव किमत सुलभे लवस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनाम् पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य आशापाशक्लेशदुर्वासनादि वेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः आशाशाटीकस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु। तो कल के प्रसंग में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से रखते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका हूं, इसीलिए अपने व्यक्तियों के दोष और गुण को विचार नहीं किया जा सकता। आपके होने के कारण मुझ में कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक मनुष्यों में हजार हजार दोष रहते हैं और जिस समय मनुष्य परमात्मा का हो जाता है एक ही गुण ऐसा है कि परमात्मा के होते ही सभी दोष हट जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। एक नीति वाक्य है, सर्वे पदा अस्ति पदे निमग्नः। हाथी का जो पांव होता है बहुत बड़ा होता है, हाथी के अलावा सभी जीवों का पांव साइज में छोटा ही रहता है। हाथी जिस जगह पर वह अपने पांव रख लेता है और जितनी जगह वह पांव से घेर लेता है उसके पांव के अंदर सभी जीवों के पांव आ जाते हैं। लेकिन चींटी जिस जगह पर अपने पांव रखती है उतने पांव में हाथी का पांव समाएगा नहीं। इसी तरह जीवन में भगवान का भक्त होना, इससे बढ़कर और कोई गुण है ही नहीं। जब इंसान भगवान का परम भक्त हो जाता है उसके जीवन के सारे दोष हट जाते हैं। यदि कदाचित कोई दोष रह भी जाते हैं तो भी वो दोष
भगवान के उपयोगी ही होते हैं। देख लो, भगवान के भक्त में यूं तो कोई दोष नहीं रहते, यदि कोई दोष रह भी जाते हैं तो वो दोष के बावजूद भी वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त हो जाता है वह भगवान के उपयोगी ही होते हैं। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहिए, इस संसार में परमात्मा को सभी प्रकार के व्यक्ति चाहिए, और शायद इसी दृष्टि से परमात्मा ने ये हर प्रकार के व्यक्ति का निर्माण किया है। संसार के सभी जीव परमात्मा की दृष्टि में सब उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। ये तो हम ये परिभाषा करते हैं कि ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। जिसको अनुपयोगी समझते हैं उसका परित्याग कर देते हैं सर्वथा। इसीलिए नीतिकार ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। बड़ा सा बड़ा चोर व्यक्ति भी काम लायक है संसार में, समझे कि नहीं? यदि चोर व्यक्ति परमात्मा के अयोग्य होता, अनुपयुक्त होता, खुद मक्खन और कपड़े चोरी करने के लिए प्रवृत्त न होते, हुए कि नहीं बोलो? इसका मतलब चोरी करना भगवान के लिए उपयोगी है। और यदि भक्त चोरी करता है तो भगवान के लिए अनुपयोगी नहीं है, भक्त चोरी करता है, ध्यान देना। इसलिए उसके चोरी करना भी भगवान के उपयोगी है। तुम यदि कहोगे नहीं महाराज, मैं तो संसार में सबसे बड़ा चोर हूं, चोर का सरदार हूं, ईमानदारी से भगवान से कहोगे तो तुम्हारा हमें आवश्यकता है, तुम हमारे पलटन में भर्ती हो जाओ, तो हमारी आवश्यकता है तुम्हारी, हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता था चोरी करने, अब तुम चले जाना मेरे तरफ से, और क्या वो काम तुम कर लिया करो। महाराज तुम्हारे तरफ से क्या क्या काम करना है, हैं? चोरी करना है भाई, क्योंकि तुमको चोरी करने की आदत है, हम तुम्हें चोरी करने का काम देंगे। महाराज क्या चोरी करना है? महाराज हम यहीं बैठे रहेंगे गोलोक में, कैलाश में, साकेत में यहीं बैठे रहेंगे, तुम हमारे तरफ से जाना भक्तों के दिल को चुरा के ले आना। चोरी करने की आदत है ना तुम्हें, ले आना भक्तों का दिल जो है वो चुरा के ले आना यहां। और जब तुम उसके दिल को चुरा कर लाओगे तो वो अपना दिल खोजता हुआ भटकेगा इधर उधर, कहां गया मेरा दिल, कहां गया मेरा दिल। तो उसको जब पता चलेगा कि उसका दिल परमात्मा के यहां है तो अपने दिल लेने के लिए आएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं वो? तो तुम यदि चोरी करना तुम्हारी आदत है तो कोई नहीं, हम तुमको भी काम देंगे, आओ हमारे यहां आओ, है? लेकिन ये नहीं समझना कि चोरी अच्छी चीज है तो हमसे दूर होकर संसार और संसारियों के वस्तु को चोरोगे, चोरी करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। इस श्लोक का अभिप्राय कल भी हमने इस पर काफी चर्चा की थी। हर काम है परमात्मा में, इसलिए वह सिर्फ
तुम परमात्मा के हो जाओ तब तुम्हारे जीवन के सारे दोष भी परमात्मा के उपयुक्त हो जाएंगे और उस दोष के चलते परमात्मा तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? सामान्यतः तो दोष के चलते सभी तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के बाद यदि तुम्हारे में वो दोष हैं तो भी तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रयोग में ले लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। तो ये श्लोक शंकराचार्य जी ने इन भावों से कहा, जड़ता, पशुता, कलंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला श्लोक है ये, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। जड़ता, पशुता, कलंकिता, कुटिल चरत्वम नास्ति मई देवा। तुम्हारा होने के कारण मुझ में ये दुर्गुण नहीं है, और कदाचित यदि अस्ति राजमौले, हे राजमौले, यदि ये दुर्गुण मेरे में है भी, जड़ता है, कलंकिता है, पशुता है, कुटिल चरत्व है भी, तो मैं तुम्हारे काम में तो आऊंगा। जड़ता है तो माला बनाकर पहन लो, है ना? पशुता है तो सवारी चढ़ लो, तुम्हें पशु ही चाहिए ना सवारी के लिए, तो नंदी चाहिए ना, पशु है कि नहीं नंदी? कलंकिता, यदि मेरे जीवन में कोई कलंकिता है तो सिर में लगा लो, तुम्हें कलंकी चाहिए सिर में लगाने के लिए? चंद्रमा कलंकी है इसलिए फिर भी सिर में लगा लिया, तो हमें सिर में नहीं लगाओ, तो नाक में लगाओ, कान में लगाओ, कहीं तो लगाओ, फिर भी तुम्हारे शोभा के पात्र ही बनूंगा, मैं विभूषण ही बनूंगा। कुटिल चरत्व, तो तुम्हारे गले का आभूषण बन जाऊंगा, आदि आदि। अब उसी बात को यहां भक्ति सहित ध्यान का महत्व है। पहले किन श्लोकों से सिर्फ भक्ति की बात करते थे, अब भक्ति सहित ध्यान का क्या महत्व है? आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम युक्तेर शिव स्मरण बाण गणेर रमोघई निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंद महावहति सुस्थिर राजलक्ष्मी। ये श्लोक एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रूपक ये है, कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा तभी बना जा सकता है जब वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रबलतम शत्रुओं को परास्त करता है, तब जाकर वह सुस्थिर राजलक्ष्मी, शत्रुओं को सर्वथा परास्त किए बिना उसकी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए अपने भारत का इतिहास रहा है, राजा लोग जब भी विलासी हुए, भोग और विलास में लगे, तब शत्रुओं ने आक्रमण किया और देश पराधीन हुआ, परतंत्र हुआ, पराधीन हुआ। अब राजा लोग यदि सुदृढ़ होते, सजग होते, सावधान होते, तब 1100 वर्ष ही पराधीनता का अनुभव भारतीयों को करना न पड़ता। 900

0: भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, कुछ कोई लंगोटी के भर पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भर पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए, त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किए। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा, डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है। बाबा रूपक है उस राजा, एक राजा सुस्थिर राज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता, इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राज्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्य लक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्य लक्ष्मी आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्य लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा पड़ेगा, ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामे सक्रोधे स रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरणम। ये अर्जुन तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको जितनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते। ये तुम्हारे जो शत्रु हैं तुम्हारे इंद्रियों में मन में और बुद्धि में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे घात लगाकर तुम्हारे साम्राज्य को छीनना चाहते हैं। और ये शत्रु यदि प्रबल होंगे, इन पर तुम विजयश्री प्राप्त नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य रूपी जीवन को, जीवन रूपी साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। तस्मात्तम इंद्रियान्यादो नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Na Vedvit Manute Brihantam. Jo Ved ko nahi janta, vah Paramatma ko jaan nahi sakta. Isliye ब्रह्मा वेद स्वरूपम। एक तो वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़े वही हैं। कौन सबसे बड़ा, किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा कौन, तो टीचर ने सोचा पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेगा, उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे। तो छोटा बच्चा था, उससे पूछा बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन, वो कहता मेरे पिताजी। अब बच्चे के लिए तो उसके पिताजी सबसे बड़े, तो सबसे

0: بڑا کون؟ وہی مہیشور، وہی شیو، جس کے لیے برہم شبد کا پریوگ کیا ہے. اتھاتو برہم، آہا سوتر تو یاد ہے لیکن ایک بہت بڑی بات کہی کہ یہ جو برہم ہے جو جگیاسی ہے، جو برہم ہے جو جگیاسی ہے، یہ برہم سب کی جانکاری میں ہے یا نہیں ہے؟ مطلب جانتے بھی ہیں اس کو یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں تو جاننے کی آوشکتا ہے کیا، جگیاسا کرنے کی کیا آوشکتا ہے؟ اور نہیں جانتے تو بھی جگیاسا کرنے کی آوشکتا نہیں ہے، جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں کیا جگیاسا. بس یہی بات ہے، یہی بات ہے. جانتے تو ہیں لیکن جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے. جانتے تو ہیں لیکن جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے. ابھی بھی بہت بھرم ہے مہاراج ایشور کے بارے میں، سنسار میں بڑا بھرم ایشور کے بارے میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کتاب ایشور کو لے کر کے لکھی گئی، چاہے کھنڈن میں لکھی گئی ہو اور چاہے منڈن میں لکھی گئی ہو. اگر کتاب پر کتاب رکھتے چلے جائیں تو آپ کو وشواس نہیں ہوگا چندرما کو چھو جائیں، اتنی کتاب لکھی گئی. اتنا لکھنے کے بعد بھی سب سے زیادہ بھرم آج بھی ایشور کو لے کر کے ہے. کوئی اسے ایک دیشی کہتا ہے، کوئی اسے جنمنے اور مرنے والا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کرشن ہی برہم ہے، رام برہم ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے رام برہم پرمارتھ روپا، رام ہی برہم ہے، دوسرا کوئی برہم ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو سب کچھ بھی نہیں ہے، شیو ہی برہم ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مہاراج آج بھی بڑا وواد ہے نا. یہ تو ہمیں اپنی بات کی، اور دوسرے جو ہیں کرسچن ہیں، زیروستر ہیں، مسلم ہیں، اور جو کچھ ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ تو کیول اپنے ہی بات کی. آپ ورنداون میں جائیے، وواد چلا، کورٹ میں کیس چلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے بائیں طرف مکٹ ہے وہی شری کرشن ہے، ایک طرف کہتے ہیں جس کے دائیں طرف مکٹ ہے وہ شری کرشن ہے. ارے ایک ہی کرشن اپنا مکٹ بھی دائیں بائیں نہیں کر سکتا، بتاؤ. یہ بھرم ہے، یہ بھرم ہے مہاراج. اسی لیے جب تک آپ وید کے پاس نہیں جائیں گے تب تک برہم کا یتھارتھ گیان، یتھارتھ بودھ ہونے والا نہیں ہے، ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ وید کے پاس نہیں جائیں گے. اسی لیے کہا وید ہی اس کا گھر ہے، کیونکہ ہمیں وید سے ہی اس کا پتا چلتا ہے. اچھا وید اس کا گھر ہے تو وید بنایا کس نے؟ پرماتما کا، برہم کا گھر کو بنایا کس نے؟ ارے بنایا بھی اسی نے ہی ہے. تو کیا انیا شرے دوش نہیں ہوگا؟ خیر چلو یہ تو دارشنک شبداولی ہو جائے گی. صبح صبح کیوں آپ کو زیادہ الجھن میں ڈالا جائے، اس کو یہیں چھوڑتے ہیں، ذرا بھکتی بھاو کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، زیادہ دارشنک شبداولی تو بھائی پھر کبھی پڑھنے پڑھانے کے کام آتی، آج کل تو آج کل پروچن کے کام نہیں آتی، پہلے آتی تھی. آج کل تو پروچن کے کام کیا آتا ہے؟ تھوڑا سا بھجن، تھوڑا سا سرل. مہاراج اور سرل کر دو، اور سرل کر دو. لیکن اسی لیے تو بھرم پھیل رہا ہے. تو برہم، برہم مانے جو سب سے مہان ہے، برہتواد برہم، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. جو سب سے مہان ہے، سب سے بڑا ہے، اور وید سوروپم، وید کہتے ہیں گیان کو. وید کسے کہتے ہیں؟ وید ود للیلابھے، ود وچارنے، ود ستایام، ود گیانے. یہ چار سنسکرت کی ورب روٹ ہے جس سے وید بنتا ہے. ویدنتی، گیانتے، جاننتی. ज्ञान स्वरूप जो होता है उसको वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान. तो वेद स्वरूप माने शिव क्या है? ज्ञान स्वरूप है. ये उपनिषद के वेद के देवता हैं, शिव वेद के देवता. इसलिए वेदों में क्या क्या कहा? सत्यम ज्ञान. देखो वो ब्रह्म कैसे हैं? सत्य भी हैं, ज्ञान स्वरूप भी है और अनंत भी। तो ब्रह्म माने अनंत और वेद माने ज्ञान और ब्रह्म माने सत्य है, अनंत वेद माने ज्ञान। तो ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और अनंत हैं। अंत नहीं है उनका। कहां तक जाएंगे हम? अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनवन पूर्वमर्षत तद्धाव तो अन्यान तेति तिष्ठन तस्मिन नपो मातरिश्व। अरे पहले सबने दौड़ लगाया इसको पकड़ने के लिए, मन ने, बुद्धि ने, सबने, जितने भी देवता थे, ब्रह्म को मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं ब्रह्म से सबसे आगे जाऊंगा, मैं ब्रह्म से सबसे आगे पहुंचूंगा। लेकिन महाराज नहीं पहुंच पाए। अनेज देकम नैन देवा आपनवन पूर्वमर्षत, देवताओं ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस ब्रह्म को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले वही विद्यमान था। वो तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत, अन्यान अति एति, दौड़ने वालों में से सभी में से अति एति उनसे पहले पहुंच गया था वो, क्योंकि सर्वव्यापक है। ये वेद के मंत्र हैं जो जो शिव की व्याख्या हो रही है, शिव की। महाराज मैं अभी कलकत्ता था, 5 दिन का एक कार्यक्रम था स्वर्गीय बंसीधर जालान की स्मृति में शिव मंदिर में। तो हमने 5 दिन शिवजी की व्याख्या की, तो सब कहने लगे महाराज ये तो नई व्याख्या हमने सुनी है, हम तो सोचते थे शिवजी भांग पीते थे और भूतों के साथ रहते थे, बस भांग पीते थे। और देखिए फिर कभी समय आएगा तो आपकी चर्चा करेंगे शिवजी के ऊपर। एक पूरा का पूरा शास्त्र, आगम शास्त्र कहते हैं उसको, कश्मीर सेविजम का, कर्नाटक में जो लिंगायत है ना, लिंगायत संप्रदाय, कश्मीर में जो सेविजम का पूरा और विश्व में, आज भी पूरे विश्व में आपको शिवजी के मंदिर मिलेंगे, शिवजी की पूजा मिलेगी। लेकिन कालक्रम से जो उसका यथार्थ स्वरूप था वो तो छिप गया है, और जो लोक प्रचलित था उसमें कुछ ऐड हो गया, कुछ प्रचलित हो गया। जैसे भांग पीना, गांजा पीना, ये उसमें ऐड हो गया, ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा लेकिन परंपरा से चल गया। विज्य कपर दिनो धनु हूं, तो यहां मंत्र बोल करके भांग चढ़ाते। अरे धनु शब्द है, विज्य शब्द है, इज्जा कहते हैं प्रत्यंचा को, इज्जा किसे कहते हैं? और वी माने विगत, जिसने धनुष पर से प्रत्यंचा को हटा दिया। यहां कहीं भांग तो है ही नहीं, विजया तो है ही नहीं, लेकिन एक परंपरा चल गई। तो ये भगवान का स्वरूप है कि सत्यम ज्ञान मनंतम, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म शिव ही है। संसार रोग हरम औषधम अद्वितीयम, क्या काम आते हैं शिव जी हमारे? सारे संसार के रोग के हरने वाली एकमात्र औषधि है। अगर आप रोगों से दूर होना चाहेंगे तो औषधि का सेवन, और भवसागर से पार होना चाहेंगे तो भी औषधि का सेवन करना पड़ेगा ना। तो भवसागर से पार होने के लिए औषधि कौन सी है? औषधि है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रक्षमाम, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पाहिमाम। नहीं, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रक्षमाम, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रक्षमाम। महादेव देव देव, कौन सी औषधि हो? महादेव देव देव, वो महादेव ही है, वो चंद्रशेखर है। ओम नमः शिवाय, ये औषधि है। इसलिए कहा वेद स्वरूप वो ज्ञान स्वरूप है, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है, जैसे रोग की निवृत्ति औषधि से संभव है, ठीक इसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से संभव है। तो नमामि शमीशान, निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निजम। देखो निज शब्द का प्रयोग है, निज शब्द का प्रयोग। निज शब्द किसे कहते हैं? द वेरी प्योर कॉन्शियसनेस, द वेरी प्योर कॉन्शियसनेस। वेरी प्योर कॉन्शियसनेस क्यों कहा? विशुद्ध हो, जो विशुद्ध स्वरूप है उसको निज शब्द से प्रयोग किया है। निजम अपने आप में है, वेद में उसके लिए शब्द का है केवल। क्या शब्द उसके लिए? केवल। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये जो केवल है यही निजम है। केवल शुद्ध स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप है। इज वेरी प्योर कॉन्शियसनेस, माया का मल आवरण और विक्षेप वहां है ही नहीं। मल और आवरण विक्षेप वहां, आप पढ़ते ना रुद्राष्टकम तो पढ़ते हैं ना, है? पढ़ते तो है ना रुद्राष्टकम, तो कभी निज के ऊपर ध्यान दिया निज का क्या अर्थ है, कभी ब्रह्म वेद स्वरूप पर ध्यान दिया? पढ़ते तो हम एक बात बताए आपको, कल हम रामकथा चल रही थी ऊपर गए थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मानो राम है ज्ञान और रावण है मोह, राम है और रावण है, जब तक आप अपना राम, आप अपने राम नहीं बनोगे, तो जब तक आप अपने राम नहीं बनोगे तब तक मोह रूपी रावण फिर चाहे कितनी भी कथा सुनो, जब तक आप इनका चिंतन नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो भाव आएंगे नहीं, भाव नहीं आएंगे तो भगवान भी कहां से आएंगे। इसलिए ठीक है पुण्य मिलता है, अदृष्ट है पुण्य मिलता है पाठ करने का, लेकिन जो आपको चाहिए वो तो नहीं मिला। एक पुण्य मिला, उसको सुख मिल गया, उसका फल सुख है, जो आपने पाठ किया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, तो उसका एक पुण्य मिला, उसका थोड़ा सा सुख मिल गया, लेकिन ब्रह्म का जो स्वरूप था, जो आनंद आना चाहिए था, वो आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने चिंतन नहीं किया। और वेदांत किसका नाम है? वेदांत की साधना का नाम है विचार साधना। क्या नाम है? विचार साधना। इसका मतलब ये नहीं भक्ति साधना नहीं है, नहीं, विचार करो कोहम, मैं कौन हूं, कुता आया था, कहां से मैं आया हूं, परिभाव है शब्द, बार बार विचार करो चिंतन करो। तो निजम, निजम माने जो अपने में ही विद्यमान है, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, जो शुद्ध स्वरूप है, एकदम शुद्ध है निजम। और निर्गुणम, देखो ये जो गुण है ना, गुण यही व्यक्ति को बांधते हैं। संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं, रस्सी होती है ना, क्योंकि उसको त्रिवलयाकार होती है, तीन तीन तरह से बनाते हैं ना रस्सी को, आजकल तो मशीनों में बनने लग गई, पता ही नहीं चलता एक वलय एक त्रिवलय है, लेकिन उसको गुण बोलते हैं। तो जैसे रस्सी व्यक्ति को बांध देती है, ऐसे ये गुण भी व्यक्ति को, कैसे? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, तम कैसे बांधता हमें? अप्रकाश, अप्रकाश माने ईषित प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश है यानी ज्यादा नहीं है, अज्ञान, अप्रकाश माने अज्ञान। तो अप्रकाश से अज्ञान से हमें रजोगुण बांधता है, और कर्म में प्रवृत्ति तमोगुण, तमोगुण अप्रकाश से बांधता, कर्म में प्रवृत्ति नहीं होने देता। प्रमादम मोह एवच रजस्य तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना, ये गुण हमें बांधते हैं। तो गुणों ने हमें बांध दिया, जैसे हमारे अंदर तमोगुण आया तो हम अंधकार में चले गए, तमोगुण आया तो हम अंधकार में चले गए, हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और ये जितने भी देखिए, जितने भी ये क्रूर कर्म करने वाले हैं, जिसको आजकल टेररिस्ट कहते हैं, पहले आतंकवादी कहते थे, आतंकवादी कहते हैं, आतताई कहते थे पहले, जितने भी हैं वो सारे के सारे तमोगुण वाले हैं। अंधकार में रहते हैं वो, अज्ञान में रहते हों, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च। और ये तमोगुण हमें बांधता है, प्रवृत्ति नहीं होने देता। अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो भी नहीं, कर्म करने ही नहीं देता। प्रमादम मोह एव च, प्रमाद और मोह ये तो महाराज तमोगुण हमें बांध के रखता। और रजोगुण लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते। रजोगुण कैसे बांध के रखता हमें? लोभ। लोभ माने जो वस्तु मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे, किसी के पास हाँ, और जो दूसरे की वह वो भी मुझे भी। महाराज ये तो एक महात्मा कह रहे थे कि भाई देखो, अपनी वस्तु भी पराए की समझो और पराए की वस्तु भी अपनी समझो। तो ये कहने लगे, महाराज आधा ज्ञान हो गया, आधा अगले जन्म में हो जाएगा। आधा ज्ञान क्या हुआ? कहने लगे, पराए की वस्तु तो अपनी समझने लग गए, अपनी वस्तु पराए की ये ज्ञान अगले जन्म में हो जाएगा। तो लोभ है ना, लोभ प्रवृत्तिरारंभ, प्रवृत्ति शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति, और फिर प्रवृत्ति होने पर कर्मों की शुरुआत, और कर्म करते करते अशम माने शांति नहीं, अशम माने शांति नहीं है वह। ये रजोगुण हमें बांध करके रखता है। और सुखम संजयति सत्वम, तो सुखेन बधनाति सत्वम, सुख से सत्वगुण हमें बांध कर रखता है। पत्नी बहुत अच्छी आ गई तो बस उसमें राग हो गया, लड़का बहुत अच्छा आ गया उसमें राग हो गया, मकान बहुत सुंदर बना लिया तो उसमें राग हो गया, महाराज शरीर बहुत है स्वस्थ है तो उसमें राग हो गया, संपत्ति में, धन में, वैभव में, परिवार में, सब में जो राग हो जाता है, ये सुख का फल है। ये किसका फल है? ये भी हमें बांध करके रखता है। तो निजम निर्गुणम, अब देखो जो बंधा हुआ है वह गुण वाला है, जो बंधा हुआ है वह, और जो बंधा हुआ नहीं है वह निर्गुण है। अब निर्गुण का अर्थ समझ गए ना, जो बंधा हुआ है, बंधन में आया हुआ है वह गुण वाला है, और जो कभी बंधन में नहीं आया वह निर्गुण है। तो निजम निर्गुणम, गुण है ही नहीं वहां, तो क्या वो गुणातीत है? नहीं, गुणातीत तो योगी हुआ करते हैं। गुणातीत क्योंकि पहले गुण थे उनके अंदर, अब गुणों को छोड़ दिया, गुणों से ऊपर उठ गए, अब गुणों से ऊपर उठ गए। गुणातीत समतीतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अब जब ये गुणों से ऊपर उठ गए तो इनको ब्रह्म कहा है, जब गुणों से ऊपर उठ गए तो, लेकिन वो तो ब्रह्म है ही, वो गुणों में आए ही नहीं तो गुणों से ऊपर क्या उठेंगे। तो निर्गुणम माने गुण रहित। तो गुण रहित की दो स्थितियां, एक तो शिव है गुण रहित जिसमें गुण थे ही नहीं, और एक ये जीव है गुण रहित। जब यह ज्ञान के द्वारा गुणों से ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव करता है, तो इसको कहते हैं गुणातीत। ये जो गुणातीत है कभी बंधन में आया था, ये जो गुणातीत है इसमें कभी सुख भी आया था कभी दुख भी आया था, लेकिन उस परम शिव में न सुख है न दुख है न गुण है, वह तो आनंद स्वरूप है। निजम निर्गुणम, वो तो निर्गुण है। और आगे क्या है? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, विकल्प। देखो ये संसार कुछ नहीं, एक विकल्प ही है। संसार क्या है? विकल्प है। विकल्प माने एक ऐसी कल्पना जो वस्तु है नहीं फिर भी मान करके बैठ गए। जैसे कभी कभी आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देते ना, तो वह विकल्प है कि यह सही है कि यह सही है। भाई दो चंद्रमा तो है नहीं लेकिन दिखाई तो दो दे रहे हैं। एक बार एक मरीज गया, कहने लगे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरे बीमारी है। क्या बीमारी है? वो कहने लगे मुझे एक की जगह दो दिखाई देते हैं, आप दो डॉक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें चारों को यही बीमारी है? क्या कहा डॉक्टर ने, तुम्हें चारों की एक ही बीमारी है। इसे कहते हैं विकल्प। इसे क्या कहते हैं? यही विकल्प है नहीं लेकिन दिखाई दे रहे है नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही संसार ये विकल्प है, मेरे ही मन का विकल्प है, ये मेरे ही मन का विजृंभण है, मेरे ही मन का विजृंभण है, मेरे ही मन का खेल है। और कुछ भी नहीं है। विजृंभण माने प्रोजेक्शन, मेरे ही मन का, ये मेरे ही मन का आउटर प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है। ये जैसे जैसे मेरे संस्कार थे वैसे वैसे मैंने बाहर की दुनिया को बना लिया। तो मनोकल्पितम मात्रम, मनोकल्पितम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, ये तो मन की कल्पना है महाराज, इसलिए इसको कहा निर्विकल्पम। अच्छा हम कहते हैं ना, देखो एक साधारण शब्द है, ये तो मैंने वेदांत का टेक्निकल वर्ड बताया निर्विकल्प का अर्थ। वैसे कहते हैं ना भाई विकल्प, विकल्प माने भाई अगर ये व्यक्ति नहीं आया तो इसके विकल्प में इसको ले लो, कहते ना, है ना, अगर ये नहीं आया तो इसके विकल्प में इसको ले लो। तो अगर मान लो आप शिवजी के विकल्प में किसको लेंगे? अरे ब्रह्म के विकल्प में किसको लेंगे? है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो विकल्प समाप्त। विकल्प तो द्वैत में है। विकल्प किस में है? द्वैत में है महाराज। ये नहीं तो ये सही, राम नहीं तो श्याम सही, अरे बॉम्बे नहीं तो कलकत्ता सही। एक महात्मा रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, किसी ने पूछा महाराज आप कहां जाओगे? तो बोले जिधर की गाड़ी सबसे पहले आ जाएगी। कोई विकल्प नहीं उसके मन में है? तो जहां द्वैत है वहां विकल्प है, जहां द्वैत नहीं है वहां विकल्प। वैसे विकल्प का वेदांत में शब्द होता है ये जो संसार है ये मेरे मन की कल्पना है, मेरे मन की कल्पना है नहीं। जैसे स्वप्न, स्वप्न इनर प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है, ऐसे ही संसार आउटर प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है। जैसे स्वप्न मेरे मन की कल्पना है वैसे ये संसार भी मेरे मन की कल्पना है। बस केवल इस कल्पना को शास्त्र से, गुरु वाक्य से धीरे धीरे समाप्त करना है। तो निर्विकल्पम महाराज, विकल्प नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? बड़ा प्यारा शब्द दिया है गोस्वामी जी ने महाराज, बड़ा ये रुद्राष्टकम है महाराज, बड़ा प्यारा शब्द दिया। क्यों नहीं है? क्योंकि निरीहम। निरीहम किसे कहते हैं? यहां हिंदी में तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता, कहते बड़ा निरीह प्राणी है, मतलब दया का पात्र कहते ना, लेकिन वहां संस्कृत में यह कहते हैं इच्छा को। यह किसे कहते हैं? जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है, जिसमें कोई, इसलिए वो निर्विकल्प है। जिसमें कोई इच्छा नहीं है तो महाराज वेदों में तो ऐसा लिखा है कि तदैच्छत, उसने इच्छा की, लिखा है ना, देखो वहां तो लिखा है। देखो ये जो हमारे बैठे हैं इन्होंने खंभात में हमसे मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे, 15 से ज्यादा हो गए। मांडू की कारिका पढ़ी थी हमसे, 15 साल से ज्यादा हो गए। तो इच्छा नहीं है, वेदों में तो लिखा तदैक्षत, उसने देखा तो इच्छा तो नहीं है, नहीं इच्छा भी लिखा सो कामयत, उसने कामना की, की ना, सो कामयत तत् तेजो सृजत। तो ये देखो, ये जो कामना है तस्य ज्ञानमयम तपः, उसका ज्ञान का स्वरूप है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, निरीह है वो, इच्छा रहित है, क्योंकि इच्छा अपूर्ण को चाहिए। इच्छा किसको चाहिए? वह तो पूर्ण है। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। आगे क्या कहा? चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। चिदाकाश क्या है और आकाशवास क्या है, आप जानना चाहेंगे? देन कम टुमारो। आज समय हो गया, इतना ही, चर्चा कल करेंगे। और शिवजी की महिमा महाराज अनंत और अपार है, और हम शिवजी की महिमा वेदों के माध्यम से आपको लेकर के चलेंगे। बड़ी अनंत अपार है ये वैदिक देवता, महाराज वैदिक देवता है ये औपनिषदिक ब्रह्म है, ये वैदिक ब्रह्म है, ये शिव जो है ये शिव वैदिक ब्रह्म है। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Vairag na hone se Vedant mein jo jivan mukti ka ras hai, us pe parda pad jata hai. Kyunki hum chintan mein, manan mein, श्रवण में ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और व्यवहार में वो जगन मिथ्यात्व की अनुभूति होती नहीं, क्योंकि जो विवाद है, तनाव है, चिंता है, वो भगवान को या परमात्मा को या ब्रह्म को लेके नहीं, वो व्यवहार को लेके ही, शरीर को लेके या शरीर के संबंधियों को लेके। तो अगर वेदांत के रास्ते पर चलते हुए भी जीवन मुक्ति का रस नहीं आता तो भी अभी लक्ष्य स्थिर नहीं। तो गुरु जी का जो वाक्य है, एक लक्ष्य निश्चित हो, लक्ष्य अच्छा हो, तो लक्ष्य के लिए यात्रा प्रारंभ करने से ही आनंद का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है। पर हमारे गुरुदेव के जीवन में आप सब लोगों ने देखा ही है, हम लोगों को तो वही श्लोक हमेशा याद आता है, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ओए ब्रज गोप, ग्वाल बालों का बहुत भाग्य, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं भागवत में, ग्वाल बालों का भाग्य की सराहना करते हैं ब्रह्मा जी। क्यों? ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? बोले भगवान कृष्ण सबके साथ बैठ करके मंडलाकार वन भोज लीला, आप लोगों ने छाग लीला यहां संपन्न किया पूज्य गुरु स्वर्णानंद जी महाराज के सत्संग में, वही वनभोज लीला में ये श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को। बोले इन ब्रज ग्वाल बालों का क्या भाग्य है, सारे संसार का मालिक परमात्मा इनके मध्य में बैठ करके भोजन कर रहा है, और केवल भोजन ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे का जूठा उठा के भी खा रहे हैं। भगवान कृष्ण जिसके पत्तल में अच्छा भोजन लगे उसका उठा के खा जा, हम लोग प्रेम से भोग लगाते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं, तो भी ठाकुर जी आते हैं कि नहीं आते, वो तो व्यक्तिगत भक्त को ही पता है, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। लेकिन वहां तो छीन के खाते, ग्वाल बालों के पत्तल से उठा के खा जाते, गोपियों का माखन चुरा के खा जाते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा, तद भूरि भाग्य मे जन्म किमप्येतव्यम्। परमात्मा, अगर अगला जन्म मेरा होने वाला है तो अब ब्रह्मा मत बनाना। बोले फिर क्या बनना है? बोले ब्रज में जन्म देना, ब्रज में कोई लता बना देना, वृक्ष बना देना, जिससे इन ग्वाल बालों के चरणों की धूली पड़े तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट हो और जीवन आनंदित हो जाए। तो वो जीवन हम लोगों ने महाराज जी का सानिध्य जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, बालक हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, या बहुत लोग हैं जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया है, श्रवण किया है, वो साक्षात श्री कृष्ण की लीलाएं उनके जीवन में दिखती थी। एक सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य जैसे लगते थे, और विद्वानों के मध्य में बोले तो काशी के पंडित अमृत महोत्सव में पाठक जी आपने देखा, काशी के पंडित भी चकराते थे कि कहां से बोल रहे। एक बार कवि सम्मेलन था वृंदावन में, पाठक जी जानते हैं वो निम्बार्क विद्यालय है, वहां कवि सम्मेलन था। झाजी वहां के प्राचार्य थे, 6 विषय के आचार्य हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत थे। तो वो महाराज जी को ले गए, बड़ा आग्रह था महाराज जी का, बड़ा उनसे प्रेम था। महाराज जी बोले हम क्या करेंगे कवि सम्मेलन में? बोले नहीं महाराज, अध्यक्षता तो आप ही को करनी, कवि सम्मेलन अब क्या करें। झाजी का आग्रह, इतना बड़े विद्वान षट दर्शनाचार्य गुरु जी गए। अब आज के कवियों में प्राय स्वाभाविक हास्य और व्यंग की कविता होती, खूब हंसाते हैं व्यंग करके, कभी किसी पे कटाक्ष करके। अब महाराज जी का जब अध्यक्षीय भाषण प्रारंभ होना था तो स्वाभाविक था लोगों मन में जिज्ञासा थी, यहाँ पे महाराज जी क्या बोले, कोई वेदांत भक्ति की चर्चा तो यहाँ प्रासंगिक नहीं होगी। महाराज जी बोले देखो यहाँ जितने कवि बैठे हैं सब जवान, और अध्यक्ष एक बूढ़े को बना दिया है। बोले मैं जब बोलूंगा तो लोग यही सोचेंगे क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। माने आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महाराज जी के मुख से इतने बड़ी बड़ी वेद वाणियों की व्याख्याएं निकलती थी, वो महाराज जी कवि सम्मेलन में ये पंक्ति गाते हैं, सारे कवि लुटपुट हो गए। उनको तो कल्पना भी थी नहीं थी कि महाराज जी ये भी बोल सकते। तो वो महाराज जी का जीवन हम लोगों ने देखा है, पूर्ण कृष्ण रूप और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप ही उनका जीवन था, शांतनु बिहारी के महाराज उनके कृपा का रूप में। इसलिए महाराज जी का पूर्व नाम वही था, और उनका पूर्ण जीवन आप अगर भागवत उठा के देखें, श्री कृष्ण के जितने गुण दिखाई देते हैं लीलाओं में, सब महाराज जी में एक एक गुण करके दिखाई देते थे। तो महाराज ऐसे महापुरुष जिन्होंने दर्शन किए, स्पर्श की, वो धन्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। जिन्होंने ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया, स्पर्श किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया, और आज भी वो वांग में विग्रह के रूप में, ग्रंथों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में सीडी ऑडियो वीडियो उपलब्ध है। और वैसे अगर बहुत भाव हो तो अनेक भक्तों का अनुभव है कि आज भी स्वप्न इत्यादि में आज भी दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, खाली दर्शन नहीं देते। तो ये तो सिद्ध महापुरुष हैं, जिनको हम कारक पुरुष बोलते हैं, जो हमेशा रहते हैं, प्रभु की इच्छा से आते हैं, जब समय उनका कार्य पूरा हो जाता है फिर प्रभु के पास रहते हैं हमेशा। उनका प्राकट्य कोई कर्म के अधीन नहीं होता है, वो प्रभु की प्रेरणा से होता है। प्रभु को अपनी भक्ति के विस्तार के लिए ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं, वो साक्षात ईश्वर रूप होते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में मैं अपने भाव पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज जो हमारे प्रवचन में उठ के उधर चले गए थे, अच्छी बात नहीं है। इनका झगड़ा बहुत पुराना हमारा, जब हम लोग अध्ययन करते थे तब से साथ में पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज से हम लोग वेदांत इत्यादि का अध्ययन किए, किसी के प्रवचन में नहीं उठे, आप लोगों ने देखा होगा यहां से उठ के वहां बैठ वॉकआउट किया, बोल रहे हैं सामने सीधे। आप ये देखिए सबकी सभा में बोल रहे, बोले वॉकआउट किया आपके प्रवचन। तो प्रत्येक बोधन जी महाराज कह रहे हैं कि डालमिया जी अपने भाव हाँ तो प्रकट तो करने ही अभी करे बात तो भाव व्यक्त करेंगे, फिर स्वामी प्रत्यक्ष बोधानंद जी महाराज और फिर अध्यक्षीय भाषण होगा। आप लोग आनंद लें क्योंकि अब आनंद ही आनंद है। हमारे स्वामी प्रत्यक्ष बोधानंद जी हमको पता लगा कि वो नाम कहते हमारा नहीं लिया जाए, अब वो नाम आप समझ लीजिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मना कर
3: दुख होता है।
2: डालमिया जी आदर
3: अर्थनी वंदनी सभी संत वृंद के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं तो संतों को ही सुनने के लिए आया था लेकिन उनका आदेश हुआ कि मैं भी दो शब्द बोलूं। स्वामी जी महाराज का जब देह विलय होने वाला था लगभग उसके 15 दिन पहले मैं स्वामी जी के दर्शन करने आनंद वृंद आश्रम गया था। स्वामी जी बगीचे में एक तख्त पर बैठे हुए थे, उनको डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी। आशीर्वाद तो सबको देते ही थे, उस वक्त मैं प्रेमपुरी से नहीं जुड़ा था लेकिन प्रेमपुरी में स्वामी जी महाराज का दर्शन किया था। विपुल में भी बहुत बार गया था दर्शन करने और वहां पर भी जाता था रहता था। तो मैंने महाराज जी से आशीर्वाद मांगा, उन्होंने मुझसे एक ही आशीर्वाद दिया कि रामायण का पाठ रोज किया करो। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करो और भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करो, वो जीवन में सुख देता रहा। खैर सुख दुख की बातें तो अलग है लेकिन संत का जो आशीर्वाद है ना सबसे ऊंची बात वही। मुझे काम के अर्थ में कुछ दिन दिल्ली भी ठहरना पड़ा और वहां से मैं जयपुर होता हुआ जब बंबई आया तब लौटने पर उसको 15 दिन हो गए थे उस बात को, तब मुझे मालूम पड़ा कि महाराज श्री का देव विलय होगा। दुख होना स्वाभाविक है सबको लेकिन ये तो ईश्वर की लीला है तो उसके लिए तो हमको नमन करना ही पड़ता। तब उनका संतों का आदेश हुआ इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक संस्मरण मेरा सुनाया, धन्यवाद।
2: डालमिया जी ने अपने भाव प्रकट किए महाराज जी के चरणों में। अब हमारे परम श्रद्धे स्वामी श्री प्रत्यक्ष बोधानंद जी महाराज हम लोगों को बड़े मधुर मधुर संस्मरण मधुर मधुर वाणी में रसमय वाणी में अब आप समझ गए होंगे श्रवण कराएंगे नाम लिए बिना, जैसे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया गया ना लेकिन सब कुछ कहा गया है, ऐसे वो नाम नहीं लेंगे लेकिन कहेंगे जरूर स्वामी श्री प्रत्यक्ष बोधानंद जी महाराज।
4: ओम बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्राग् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम् माया पीप प्रिजुंबयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदं श्री दक्षिणा मूर्तये निदये सर्वविद्यानां विषजे पवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ तच्छञ्योरापृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। संस्कृत में जितने भी शब्द है वो मूल उसका होता है धातु। धातु से शब्द का अमुक प्रकार के संस्कृत के नियम अनुसार उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। तो जन्म शब्द है वो जनीर प्रादुर्भावे इस धातु से बनता है जन्म। आविर्भाव प्रादुर्भाव इसका अर्थ होता है जो है विद्यमान वो कुछ कारण से वर्तमान बनता है। जैसे इस काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, मंथन करने पर वो वर्तमान हो जाता है, इसी का नाम है आविर्भाव प्रादुर्भाव। देखो वैज्ञानिकों के कई जमाने पहले ये बात इन लोग को मालूम थी कि कोई नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। यू कांट क्रिएट अउंट्स ऑफ मैटर, यू कांट डिस्ट्रॉय अउंट्स ऑफ मैटर, टोटली इम्पॉसिबल। एक तिनका भर भी चीज नई पैदा नहीं हो सकती है, बदल बदल के आविर्भाव होता जाता है। ऐसे ये जन्म जो है वो भागवत की भाषा में, वेदांत की भाषा में, स्थूल शरीर जो अन्न से बना हुआ है, अन्ना जायते अन्न नैव वर्तते, उस अन्नमय कोष में ये सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना है उसका उसमें प्रवेश होना और उसके साथ तादात्म्यपन प्राप्त करना अविद्यावशात, इसी का नाम है जन्म। इसके लिए उपनिषदों में बहुत सी चर्चा है, ये जीव कब इस स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, बादलों के साथ पानी में नीचे जाके अन्न से आके आया है, कैसे आता है, बहुत चर्चा है। हमने ये तय नहीं किया कि ये शरीर मेरा है एक दिन, जैसे आज से ये घर मेरा है, ओनरशिप में ले लिया, नहीं, ये जन्म से ही यह शरीर मैं हूं ऐसा तादात्म्य अपन सब में है। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है, ये सहज प्राप्त है। और इस तादात्म्य अपन का भंग होना, टूटना, इसी की संज्ञा बनती है मृत्यु। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जितना प्रारब्ध है, प्राक आरब्ध, इतना समय तक संयोग रहता है, फिर उसका मृत्यु अलग हो जाना होता है, उसी का नाम है मृत्यु। अब आप देखिए सभी प्राणियों का जन्म होता है और भगवान श्याम सुंदर ने इस तादात्यपन जीव के लिए एक बात गीता में कही, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुवम, ये बात अचल है, जो पैदा हुआ हुआ अपने को मानता है वो अवश्य एक दिन, ध्रुव क्या है, उसका ये शरीर छूट जाएगा, डिस्पोजेबल, दिस बॉडी डिस्पोजेबल, टूटेगा। अब इसमें एक फर्क है, जो पैदा होता है वो मरेगा, और उसके लिए उपनिषद ने बात बताई, मृत्यु से मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। नाना मीन्स द्वैत को जो सत्य मानता है अपने से पृथक मानता है उसको भय होता है। देखो ये बात बहुत लोग बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, द्वितीयाधि भयम भवती, द्वैत से भय होता है। ये द्वैत से भय नहीं होता है, द्वैत मुझसे पृथक है ये भ्रांति से भय होता है। अपनी परछाई भी अगर अपने को लगे ये अलग कोई चीज है, परछाई किसकी है, भय होगा। इसी प्रकार से द्वैत भय का हेतु नहीं है, द्वैत की भिन्नता जो है अपने से पृथकता वही भय का हेतु है। मृत्यु से मृत्यु ये नहीं कहते जन्म से जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होता है। मृत्यु का नाम किसी को सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। आपनोति यह इह अस्मिन जन्मनि नाना इव पश्यति सत्य रूप से मानता है। ये सबकी कथा है, जायस्व म्रियस्व, जन्मता है मरता है, ऐसे उपनिषद के मंत्र है। और गति भी बता दी, उत्तरायण गति दक्षिणायन गति, परवश अवश होकर ये दोनों गतियों को प्राप्त हो करता है। ये सब शास्त्र चर्चा है, इसमें प्रमाण शास्त्र है। जीव की गति किसी को दिखती नहीं है और न दिखे वही अच्छा है, नहीं तो पकड़ के वापिस ले आएगा उसको वो जाए ऐसे ही अच्छा है। कोई जानता नहीं ये विषय शास्त्र का है। पर एक बात है, जो अपने को पैदा हुआ मानता है उस अवश्य मरेगा। अब आप देखिए कि इस जन्म और बीच में जरा व्याधि आदिदेवम अधिभूतम आध्यात्मिकम दुखम ये परवश जीव को हमेशा भोगना ही पड़ता है। दुख दोषानुदर्शनम। अब एक बात देखिए, जिसके लिए प्रेमपुरी जी है, माने ये सत्संग का स्थान है जहां हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री हर रोज आते थे, और स्वरूपानंद जी ने इतना बढ़िया बताया कि एक एक कण में महाराज जी है। और एक बात उनके आपको बहुत अच्छी लगी, जो महाराज जी के बहुत करीब है उनको महाराज श्री के लिए बोलना बहुत मुश्किल भी है। अपने से पृथक देखे तब बोले ना, इतनी बातें जिसका अंत नहीं हो सकता है। तो आप देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहां एक चर्चा की जाती है, वो है नित्य अध्यात्म विद्या मंदिर है। आत्मनि इति अध्यात्म, इस शरीर के भीतर और सबके सब शरीरों के भीतर, एक शरीर के नहीं, देह सर्व देह में जो एक प्रत्यग आत्मा है, एक पूर्ण आत्मा है, पुरो उषति वसति इति पुरुषः, पूर्णत्वात् पुरुषः। ये पुरुष शब्द संस्कृत में बहुत बढ़िया है, पुरुषः पुरुषः दो बार कह दो महावाक्य हो जाएगा। इस शरीर में जो प्रत्येक आत्मा है वही पूर्ण ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञम च पिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो इसके स्वरूप का जब बोध होता है कि न जायते अयम आत्मा न कदाचित जायते, ये आत्मा जो साक्षी है, साक्षी का जो स्वरूप है वो कालगत कभी नहीं होता है, काल में उसका आविर्भाव नहीं होता है। क्यों? नित्यत्वात् अजह ध्रुवम। सब हेतु दूसरी पंगे, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण है। तस्मात् न म्रियते, आत्मा न जायते तस्मात् वाट न म्रियते। किसी ने कह दिया हां वंद्या पुत्र भी न जायते तस्मात् न म्रियते, नहीं, आयम आत्मा प्रत्येक आत्मा अंगुली निर्देशेन, ये जो आपका आत्मा है अंगुली निर्देश करके कहते हैं वो आत्मा है सत अभाव न विद्यते, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। क्यों? नित्य है, काल का आधार है, काल का प्रकाशक है, और काल में न आता है न जाता है। वो सबका आत्मा यही है, पर सब ये बात जानते हैं नहीं है। जिन्होंने इस बात का चिंतन किया प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, संप्रदाय के अनुसार, गुरुमुख से, सबकी आवश्यकता है। गुरु भी संप्रदायवित होना चाहिए। आजकल एक नया चला है, मैं स्वयंभू आचार्य हूं, मानी मेरा कोई गुरु नहीं है और मुझे गुरु बनाओ, है ना। और दूसरे किसी गुरु के पास मत जाना, है ना। और मैं ही लास्ट गुरु हूं और कोई अपने आने वाला नहीं है, लेटेस्ट भी मैं ही हूं, ये सब है ना। हम लोग में भी थोड़ा होना चाहिए ना, ये खालिस्तान नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए अंदर। ये सब देखेंगे आप लोग, आस्था चैनल देखिए, सब प्रकार की दाढ़ी देखेगी, उसमें ये भी आएगा, लंबी सब दाढ़ी देखेगा। तो आई एम सॉरी टू से ऑल दैट। तो जायत ये जो है गुरु के पास संप्रदायवित, आत्मा नित्य है, अजय है, जन्म मृत्यु रहते, ये सब बात करने से कुछ नहीं होता है। एक एक शब्द का जो अर्थ है उसका उद्घाटन करना, माने अनफोल्डिंग द वर्ड विदाउट क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट, मेकिंग देम सी द मीनिंग, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। संप्रदाय जो है चला है शंकराचार्य से भी पहले, गौड़पादाचार्य से पहले, ये नारायण से संप्रदाय भी साथ में आ रहा है। कैसे शास्त्र के अर्थ को समझना, गूढ़ा अर्थ को आत्मसात करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया, पर सत्यम अनंत है, अनंत सत्य है, ये जो सामानाधिकरण्य है इसको समझने के लिए संप्रदाय चाहिए। असंप्रदाय वित्तो मूर्खवत उपेक्षणीयम, जो संप्रदाय को नहीं जानता है उसको मूर्ख की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, ऐसे हमारे प्रातस्मरणीय महाराज ने संप्रदाय वित्त, आप देखिए अमृत महोत्सव में पाठक जी सबका नाम लेते थे, उनकी वाणी यहीं से प्रारूभ, कौन कौन से संत से क्या क्या सीखा, जिन्होंने कुछ भी दिया। आज का जो पुस्तक है पावन प्रसंग में भी आप देखिए, महाराज जी सारग्राही थे और सबका सम्मान करते थे, और खास करके वो कहते थे जो शास्त्र है वो महात्मा या संप्रदाय वैत नहीं होगा तो क्या समझ में आएगा। इसलिए इसके द्वारा अपने आपा का जो स्वरूप जन्म मृत्यु रहित इसका बोध होना, यही सचमुच में आनंद जयंती है। और इसलिए आप देखिए, एक बात और देखिए, हम लोग सबके जन्म दिन आता है, आजकल तो अलर्ट होता है सब कंप्यूटर में, तो लोग तत्काल मैसेज भेज देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सबकी बर्थडे डाल देते हैं और अपने आप मैसेज आ जाता है, ये सब मॉडर्न है। और फोन भी आएगा और बधाई हो भी होगी, केक भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको आनंद भी होता है कि चलो आज हमारा जन्मदिन है। पर जन्मदिन के समय सचमुच में अंदर थोड़ा दुख भी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग डाउन, है ना। अगर 85 इयर्स हो गए तो कितना बाकी रहा है? अगर 100 साल जिए तो 15। काउंटिंग डाउन शुरू हो गया, चलो खुशी होती है जिंदा है। हम लोग जब जिंदा है तब तो जन्मोत्सव मनाते और अलोक मनाते हैं, पर एक बार शरीर पूर्व हो गया तो पुण्यतिथि है, जन्मोत्सव कोई नहीं मनाता है। आज देखिए एक चमत्कार दूसरा, महाराज श्री का 100 साल तो हमने मनाया और एक साल और आगे लग गए, 101 वी आर सेलिब्रेटिंग, बहुत बड़ी बात है। वाय क्यों? क्योंकि जन्म भी सार्थक हो गया, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से स्वयं मुक्त है ये जाना, बने नहीं, ये गड़बड़ मत करना। जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए तो फिर थोड़ी देर में बद्ध हो जाएंगे, है? जो पैदा होता है वो नाशवान होता है, ये सब बोलने में गड़बड़ है। अभी महाराज जी मुक्त हो गए तो पहले थोड़े दिन मुक्त हो गए, फिर क्या हो जाएगा? फिर बद्ध। प्रेमपुरी में दो घंटे सत्संग में मुक्त, फिर घर जाने पे बद्ध नहीं परम बद्ध, ऐसा हो जाता है। पत्नी पहला पूछेंगे देर से क्यों आए, चालू हो जाएगा बात से स्वयं।

0: की तरह जिन्होंने सेवा की, वो सब कोई जन्म मृत्यु में भी आ नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि उनकी जो पवित्र वाणी है, अभी स्वरूपानंद जी मुझे मिले, उन्होंने यही कहा कि महाराज जी उनके एक एक शब्द मन में गूंजते रहते हैं। महाराज श्री की वाणी की एक और विशेषता थी, आप उनके सामने बैठ जाओ और उनको ध्यान से सुनो, मैंने जिंदगी भर यही किया, तो उनके जो शब्द थे वो मन में बिल्कुल ऐसे बैठ जाते थे, कभी निकल नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो वाणी है वो अपना प्रमाण है, वो अपना काम करेगी और इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सबको मुक्त करके ही रहेगी। इसलिए हम रोज भी सुनते हैं और सुनना चाहिए। और ये वांग्मय अवतार स्वामी गिरीशान जी ने बताया, ये पुस्तक सचमुच वांग्मय अवतार है। मैंने अमेरिका में भी कितने लोगों को ये पुस्तक सीडी सब दिया, बस मेरा काम बढ़ जाता है। किसी को एक पुस्तक दिया इसका मतलब है उनको पूरा सेट चाहिए, पूरी सीडी चाहिए, और फिर मेरे क्लास में भी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम सब मिल गए महाराज जी हमको। अभी आपकी भी जरूरत नहीं है। इतना यल्लापात न परो लाभ है, ऐसा लाभ है। तो महाराज श्री की ये कृपा, अभी टाइम तो है पर 5 मिनट में पूरा करूंगा। महाराज जी को भी अध्यक्ष, प्राय अध्यक्ष को टाइम नहीं मिलता, आज पहली बार मिल रहा है। मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि अध्यक्ष को 3 मिनट मिलता है ज्यादा से ज्यादा, और लोग को बहुत कुछ कहना होता है। आज बहुत अच्छा है, गिरीशान जी है ना, तो बढ़िया चलता है। पहले कह देंगे, बाद में कह देंगे, काल की मर्यादा बता देंगे, सब ठीक है। इज वेरी कैपेबल पर्सन।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

यह अक्षर ही सब कुछ है, इदगम सर्वम। इदम शब्द दे दिया है, सब कुछ है इदम। कोई चीज शाश्वत होती है, अपने अंतिम स्वरूप में होती है, रहने वाली होती है, तो वो चीज को निर्देश करके नाम लेके बताया जाता है। अब इदम यानी कौन सा नाम, किसका नाम, किसका आकार? इदम क्या कांस्टेंट रहने वाला है? सोचिए, इदम एक तरीका रहता है, इदम तो बदलता रहता है। इदम यानी क्या, सब कुछ यानी क्या? सब कुछ कहते हैं तो कोई ठोस चीज के बारे में नहीं बताते हैं, इसी से पता लगता है। और ओम याने, अरे ओम के बारे में तो पूरा उपनिषद है, और यही उपनिषद नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में बात की है। तो ओम जो है उसके बारे में हम बता सकते हैं, प्रश्नोपनिषद बता सकता है, मैत्रेय उपनिषद ने बताया, चांदोग्य उपनिषद ने बताया, भगवत गीता ने कहा ओम तत्सद इति निर्देश्य ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। तीन प्रकार से ये ब्रह्म जो है वो बताया जाता है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो ये यहाँ ओम है, एक कांस्टेंट फैक्टर है, जो अविनाशी परब्रह्म है, जो अक्षर है, और ये सब है। तो ये सब है, ये जो सब की व्याख्या है वो क्या है, तो वो अभी दृष्टांत से हम समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसके ऊपर पूरे मांडुक्य उपनिषद की वो दृष्टांत जो है वो नींव है। और वो कौन सा दृष्टांत है, तो बोले रज्जु और सर्प का दृष्टांत देके बात की जाती है। रज्जु है, अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान के ऊपर क्या क्या है। अब इन सब हमारे अधिष्ठान के ऊपर, अधिष्ठान एक ही है, इसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि रज्जु इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, ये रंग का है, ये वजन का है। अभी रज्जु के बारे में मैं आपको इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सच है या झूठ है? हाँ, सच है। मैं रज्जु के बारे में आपको दे देती हूँ कि रज्जु ऐसा ऐसा है, तो आप सबने क्या कहा कि सच है। ऐसे ही ओमकार के बारे में कहते हैं कि ओम मकार मात्रा वाला है, उकार मात्रा वाला है, अकार मात्रा वाला है, चौथी भी मात्रा है, और ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है। तो अब इन सब से क्या वास्ता है, तो बोले थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, संध्याकालीन जो प्रकाश है उसमें, यानी मेरे बारे में मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है, अधूरा ज्ञान है। पूरा अज्ञान होता ना तो प्रवृत्ति ही नहीं होती। पूरे अज्ञान में, पूरे अंधेरे में रज्जु के ऊपर कोई भ्रांति नहीं बनती। ये तकलीफ कहाँ हो गई है, थोड़ा अज्ञान और थोड़ा ज्ञान बना हुआ है। तो जब वो संध्याकालीन अंधेरा होता है तो उसके ऊपर किसी को सर्प नजर में आएगा। जिसको सर्प का बहुत डर लग जाता है ना, उसको सर्प दिखेगा भाई। जिसके घर में सुबह पानी नहीं आया होगा उसको क्या लगेगा कि भाई ये तो पानी है। तो कोई कच्छ से, भूकंप से आया होगा, कच्छ से, भुज से आया होगा कोई, तो वो व्यक्ति को क्या लगेगा, भाई जमीन तो खिसक गई है, जमीन के अंदर छेद हो गया है, तिराड हो गई है, ये तो जमीन फट गई है। एक ही रज्जु, धरती फट गई है, पानी जा रहा है, सर्प आ रहा है, या टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है। तो ये क्या हुआ, ये जो रज्जु है इसके ऊपर इन सब का अध्यास हुआ है। इन सब क्यों कहते, इन सब किसको कहते हैं? अब एक नियम देख लीजिए कि जिसके बारे में ये सब ऐसा कहा जाता है ना, उसमें से एक भी सत्य नहीं होता है, भ्रांति के समय ही सत्य होता है, ये नियम है। इन सब से क्या है, अरे भाई ये चार बात आपने बता तो दी और दिखा तो, हम प्रूफ भी ले आएंगे, ये चारों व्यक्तियों को सामने आके खड़ा कर देंगे तो बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा ऐसा दिखा, किसी को पानी, किसी को लकड़ी, किसी को धरती में चीर दिख गया, किसी को सर्प दिख गया, ये चारों दिखे हैं। पर ये चारों सत्य नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, इन सब
ये कोटि में लगा दिया। अब जगत को क्या कह दिया कि ओमकार जो है वो ये सब कुछ है, यानी रज्जू जो है ये चारों है, ऐसे ही ओमकार ये सब कुछ है, यानी क्या ओमकार तो है ही। हम जब इतना ही स्टेटमेंट सुनते हैं तो मन क्या प्रतिक्रिया करता है कि भाई ओमकार अगर परमात्मा है, ओमकार अगर सत्य है, तो फिर ये जगत भी सत्य हो गया भाई, क्योंकि ये सब ओमकार है तो जगत सत्य हो गया। पर किस प्रकार हो गया, जिस प्रकार जिस क्षण जितने क्षण तक वो सर्प सत्य है, वो पानी सत्य है, वो लकड़ी सत्य है, उतनी ही क्षण तक ओमकार के ऊपर का जो जगत, जो आरोपित जगत है वो सत्य है, ऐसा समझना है। ये एक बात, एक विचार पूरा हो गया। उपनिषद को क्या कहना है, क्या बताना है कि पहले तो देखिए ये परब्रह्म जो अक्षर है, परब्रह्म जो अविनाशी है, वो सीधा निर्देश नहीं करना है उपनिषद को, क्योंकि सीधे निर्देश से बात नहीं बनती, सीधे निर्देश से वो मेरी अनुभूति का विषय नहीं होता। अभी तत्वमसी कह देंगे आपको, कहने में देर क्या, गुरुजनों को भी कम बोलना पड़ेगा, ये तो अच्छा है, सीधा निर्देश अच्छा है, दोनों का समय बच जाएगा, पर ऐसा होने से मेरी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि मेरा प्रयोजन, उपनिषद कहते हैं कि हमारा प्रयोजन ये संपूर्ण चराचरात्मक जो जगत है वो परब्रह्म का ही नामाभिधान है, यानी जिस जगत को वाणी से, जिस वाणी से हम जानते हैं। उपनिषद में भी कहा है कि इदम सर्वम नाम भी दाम भी ही, ये सब कुछ तो नाम रूप ही है, यानी जो वस्तु है वो अपने नाम से वाणी के उच्चारण से अलग नहीं है। जैसे ये डिश है तो ये डिश जो उच्चारण जो है, डिश जो नाम है, वो डिश से कितना दूर है, हाँ जरा भी दूर नहीं है। और ये नाम की ताकत क्या है पता है, अगर मैं ये कहूँ ना, ये बताऊँ ना, तो पीछे जो एकदम वो भाई बैठे हैं उन्हें दिक्कत होगी। ये आप एकदम दिख रहा है पीछे, एकदम पीछे भाई, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, ये दिख रहा है क्या है, हाँ थैंक यू, क्या कहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, स्टील का कोई सामान है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, अब कुछ किसी को कुछ नहीं दिख रहा, मेरे पास पेपर वेट है, आपको अभी समझ में आया, पेपर वेट है, ये बुक के ऊपर पत्ता हिल नहीं जाए इसलिए रखते हैं ना वो पेपर वेट, समझ में आया, पेपर वेट है। अब पदार्थ बताने की जरूरत रही नहीं, नाम की ताकत देखी, पूरा पदार्थ दिखाया इतना बड़ा तो तकलीफ है, पर नाम बोल दिया तो बात हो गई, नाम से पदार्थ दूध नहीं है, नाम की वैल्यू पदार्थ से ज्यादा है, हाँ नाम ले लिया तो बहुत हो गया। ये यही कहना है कि ये सब कुछ जो पदार्थ है उसका नामाभिधान एक बार कर दिया, और जिस जिसका नाम और आकार, जिस जिसका आकार है, जिस जिसका जन्म है, उसका नामाभिधान तो हो ही जाता है। तो भाई आप जो नामाभिधान करते हैं उसके लिए जो वाणी का प्रयोग करते हैं, वो वाणी का स्रोत क्या है, तो वो ओम है, तो वो ओम कह दिया तो ये सब कुछ पदार्थ का नामाभिधान हो गया, ये एक बात। और ओम की जो परिपूर्णता है, ओम की जो उच्चता है, वो ये पदार्थ से भी ज्यादा है, ऐसा उपनिषद को कहना है, ये ऐक्य स्थापित करना है। तो भाई ये आप टेबल को ओम आप कैसे कहते हैं, ये तो टेबल है, उसमें टेबल ऐसा आ गया, इसमें ये पुष्प आ गए, इसमें ये पुस्तक आ गई, तो ये सब शब्द क्या है। तो उपनिषद ने कहा कि जैसे वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये विकार शब्द लेना है, यहाँ उपनिषद के ये वाक्य का अर्थ नहीं लेना है, विकार शब्द समझाने के लिए ये रेफरेंस दिया है शंकराचार्य जी ने कि विकार यानी क्या, वाणी का विकार यानी क्या, कि वाणी तो अ उ और म ही है, ये ओमकार का विकार जो है ये पुष्प हो गया, ओमकार का जो विकार जो है ये टेबल हो गया, ओमकार का जो विकार जो है ये पुस्तक हो गया, कैसे, जैसे रज्जू का विकार जो है वो सर्प हो गया, है तो रज्जू पर मैं बोल क्या रही हूँ, हाँ आप समझ में आया, है तो ओम पर मैं बोल क्या रही हूँ, पुस्तक, है तो लकड़ी मैं बोल क्या रही हूँ, है तो रज्जू मैं बोलती हूँ लकड़ी, अरे इसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, झूठ बोलने में तो कंसिस्टेंसी रखो, झूठ तो सरिता बोलो,
बोले नहीं उसमें कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हाँ है तो पानी, है तो सर्प, है तो लकड़ी, बोलते हैं क्या हम है तो सब रज्जू, बोलते हैं अलग अलग, तो ये क्या हो गए रज्जू के विकार हो गए। ऐसे ही ओंकार के विकार क्या है, ये पूरे दृश्य प्रपंच के जितने जितने आपके नाम विकार है और बाहर के आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से लेके ये हमारा शरीर, कौन सा नाम तो बोले उर्मिला बहन, ये ज्योति बहन, दिलीप भाई, तो ये जो क्या है ये नाम जो आ गया, ये यज्ञेश, तो ये जो नाम आ गया ये नाम दे दिया ना, ये विकार है भाई। तो समझो ये मेरा नाम जो है किसका विकार है, ये तो विकार है, ये तो सच नहीं है, तो मेरा अधिष्ठान क्या है। अगर ये नाम विकार है ऐसा हम आपको समझा दे तो ही आप अधिष्ठान के बारे में सोचेंगे ना। अभी तो इसी को अधिष्ठान मान लिया है, ये शरीर मन बुद्धि का संघात सच है, ये मैं उपाधि जो हूँ वो सच है, तो अधिष्ठान के बारे में हम ढूंढ नहीं रहे, कोई प्रयत्न नहीं है। इसीलिए उपनिषद से क्या हमें पता लगाया कि भाई ये तो जो नाम जो है ना ओमकार के सिवा का नाम है, तेरा नाम ओमकार है तो बोले नहीं ओमकार नहीं, तेरे मन का नाम ओमकार है तो बोले नहीं, बुद्धि ओमकार है तो बोले नहीं, ये मन बुद्धि और शरीर के अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग विचार से वो अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्ति अलग अलग है, तो ये विकारवान है, तो ये विकारी जो है नाम दे सकते हैं। तो चलो मैं उसके अधिष्ठान के बारे में अब जानना चाहता हूँ, ये सबका कारण क्या है। और ये एक बात हो गई शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म और कारण शरीर की बात हो गई, दूसरा क्या क्या विकारवान है। अब जितना जितना विकारवान मेरे भीतर है वो हमें अन्वेषण करना है, सोचना है। ये आत्मा का अधिष्ठान का अन्वेषण मेरे भीतर शुरू होता है कौन से श्लोक से, ओम इति एतत् इदगम सर्वम से। ये अन्वेषण क्या हुआ, ये एक विकार देख लिया, दूसरा विकार क्या विकार हो रहा है भाई, कभी मैं जाग रही हूँ तो ये जागृत अवस्था है, ये अवस्था को भी नाम दे दिया, अवस्था ओम है ऐसा कहते हैं। कोई पूछेगा कि भाई कोई फोन करके पूछते हैं कि जागो छो के ऊंगी गया तो, अरे भाई तुझे सोते भी होंगे तो भी तुझे जवाब देने के लिए जग गए, टेलीफोन की रिंग बज गई तो हम क्या कहेंगे भाई, ये तो सब अवस्था है विकार है, ये तो ओम है। आपको सोने जाना है, नहीं मैं ओम में जा रहा हूँ। आप डीप स्लीप में गाढ़ निद्रा में थे क्या कल, नहीं मैं ओम में था, ऐसा बोलेंगे नहीं मैं जाग रहा था, मैं सो रहा था, मैं स्वप्न देख रहा था। तो ये क्या हो गए, ये आपकी अवस्था के तीन विकार हो गए जो आपने निर्देश किए, जिसका आपने वाणी से उच्चारण किया। तो ओहो ये अगर ये ब्रह्म होता तो कांस्टेंट होता, अगर ये अवस्थाएं सच होती ब्रह्ममय होती तो अलग नहीं होती थी, सच नहीं है इसीलिए बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। अरे उसका नाम भी दिया जाता है विच इज अदर देन ओम, विकारवान है। तो चलो मैं इसके अधिष्ठान के बारे में अब जानना शुरू करूं। ओहो पर फिर से अभी तो अधिष्ठान के बारे में सोचेंगे तब दूसरे विकार दिखने लगेंगे। शरीर में जितने भी विकार है पहले उसे देख लो, पहले उसे परख लो। क्यों? क्योंकि सीधे ब्रह्म के अधिष्ठान के बारे में थोड़ा सुन के भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो देव और दानव की बातें याद है ना, देव इंद्र भगवान को भी उपदेश दे दिया, दानवों को भी उपदेश दे दिया कि भाई ये ब्रह्म है, तो भाई क्या ब्रह्म है। तो अभी तो गुरु अभी पूरे नहीं करते हैं और हाँ मैं ब्रह्म को जान लिया ऐसे चले जाते हैं, फिर अपना गुरु के प्रदेश से जब जा रहे हैं तो रास्ते में पानी में अपना प्रतिबिंब दिख रहे हैं, तो भाई क्या जाना, गुरु ने फिर से बुलाया, वे पूरी आख्यायिका के बारे में नहीं बता सकते, फिर से पूछा कि भाई तूने ब्रह्म को कैसे जाना, तो बोले ये जो प्रतिबिंब मेरा दिख रहा है ये ब्रह्म है, ये चक्षु में जो दिख रहा है ये ब्रह्म है। ऐसे सब ने अधूरा सुन के ब्रह्म के बारे में जान लिया, तो किसी ने अन्न को ब्रह्म मान लिया, किसी ने प्राण को ब्रह्म मान लिया, मन को ब्रह्म मान लिया। क्यों? क्योंकि विकार को पूरी तरह नहीं जाना, तो ओंकार के माध्यम से पहले अपने भीतर के जो विकार है उसे पूरा जान लो। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है हमें कोई बैक्टीरिया, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना, तो एक बार नहीं 10 बार हम डॉक्टर को पूछते हैं भाई कितनी गोली लेनी है, कितने कितने घंटे लेनी है, कितना ख्याल रखते हैं। क्यों भाई इतना ख्याल रखा, भाई एक भी अगर जो बैक्टीरिया रह गया तो वो पोटेंट है, क्या है पूरा जो डिजीज है वो रिलैप्स करने के लिए उसकी शक्ति है उसमें। ऐसे कितने भी भारी एंटीबायोटिक आपने ले ली, एक भी रह गया पार्ट उसका, तो मेहनत खत्म।
भारी अपने हमने साधना कर ली, जब तक तीर्थ यात्रा मरण चिंतन निधि ध्यान सब कुछ कर लिया, पर ये विकार को पूरा नहीं जाना, थोड़ा अहंकार रखा कि ये तो सब मैं जान रही हूँ, मुझे कुछ पता है, ये जो मेरे आजू बाजू जो समाज जी रहा है उससे थोड़ा मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा विद्वान हूँ, बस इतना ही जो विचार जो है वो फिर से आपको जीरो में ला के रख देगा पूरा कोर्स। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं तो पूरा कोर्स आपको फिर से करना पड़ेगा, तो हम भी ऐसा कहते हैं, इसलिए हम बार बार आते हैं ना, प्रस्थानांतरण ही फिर से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको फिर से वो सब करना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब प्रकरण ग्रंथ पूरा भगवद गीता सब उपनिषद सब ब्रह्मसूत्र फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो विकार को पूर्णतया जान लीजिए, पहले विकार को क्या जाना, दो दिख रहा है वो स्थूल विकार, सूक्ष्म और कारण देख लिया। दूसरा कौन सा विकार है, तो दूसरा विकार है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, हमने जान लिया। भाई तीसरा क्या कुछ हो रहा है, तो बोले कि देखिए अभी आपको ये जो हम बता रहे हैं ना, अब आपको पता लगेगा कि ये प्रकरण ग्रंथ अगर आपने नहीं पढ़े होते और ये प्रवचन, ये उपनिषद का प्रवचन हम प्रेमपुरी में ही कर सकते हैं, उसका कारण है कि हमें पता है कि यहाँ बैठने वाले प्रकरण ग्रंथ सुन के बैठे हुए हैं, नहीं तो एक से शुरू करना पड़ता तो उपनिषद का प्रारंभ ही लास्ट दिन में होता, हो ही नहीं सकता था। अब आपको इसकी वैल्यू, इसकी कीमत पता लगेगी कि प्रकरण ग्रंथ याने क्या। अभी विकार हमें और दिख रहा है, कौन सा विकार दिख रहा है, तो बोले कि भाई कोई कोष नामक विकार है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है, सोचना है। तो बोले कौन सा कोष है, तो बोले अन्नमय कोष है, तो ये अन्नमय में ओम है। बोले किसी को आप पूछेंगे कि भाई ये क्या है तेरा शरीर, तो बोले ओम है, तो नहीं ये अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष के बाद क्या आता है, तो बोले प्राणमय कोष है, और इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये मंत्र का भाष्य शुरू करने से पहले जो संबंध भाष्य लिखा, संबंध भाष्य में ये बात उन्होंने बताई है कि रज्जु के ऊपर सर्प आदि विकल्प है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर प्राण आदि विकल्प है। तो प्राण आदि जो विकल्प है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, तो ये आत्मा के ऊपर जो विकल्प है, यानी यही आत्मा कभी अन्नमय कोष जैसा लग रहा है, कभी प्राणमय, कभी मनोमय जैसा लग रहा है, तो ये नाम जो दे रहे हैं वो नाम वाणी से विकार है। ये वाणी का मूल स्रोत क्या है, वो ओम है। तो प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय जो वाणी है वो ओम है। तो आप बराबर थोड़ा सोचिए, प्राणमय शब्द जो है वो प्राणमय कोष से कितना दूर है, थोड़ा भी दूर नहीं है। तो ये प्राणमय शब्द और ये प्राणमय कोष, ये दोनों तो एक हो गए। अब कहते हैं कि ये प्राणमय जो शब्द जो है वो किसका विकार है, तो बोले ओमकार का विकार है, सब वाणी विकार ओमकार के हैं, तो ये ओमकार प्राणमय कोष हो गया ना, ठीक है, ओमकार प्राणमय कोष हो गया, अन्नमय कोष ओमकार, मनोमय कोष ओमकार, विज्ञानमय कोष ओमकार, आनंदमय कोष ओमकार, यानी पूरा दृश्य प्रपंच जो है वो क्या हो गया, पूरा ओमकार हो गया। पर है क्या ये सब, ओहो आत्मा के ऊपर ही विकल्प है, आत्मा के ऊपर ही ये भास रहा है, दिख रहा है, अंत में तो ये सर्प है, अंत में ये लकड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी लकीर जो दिख रही है, पानी दिख रहा है, वो अंततः क्या है, तो बोले रज्जु ही है, बस ऐसे ही सब प्राणादि विकार है वो परमात्मा है, आत्मा ही है, अधिष्ठान रूप ही है, और वो अंत में क्या है, वो ही ओम है। इसीलिए ये जो ओम है इज इक्वल टू ये आत्मा है, इज इक्वल टू ये सर्वादृश्य प्रपंच है, ये ऐक्य करना है। ये जब समझ में आ गया तब ये ओम इति एतद अक्षरम इदगम सर्वम, ये उपनिषद का जो उद्देश्य जो है वो यहाँ आके पूर्ण होता है कि सर्वात्मक जो जगत चराचर है वही ओम है, वही आत्मा है, ये है सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि। आपने गुरुजनों के मुख से कितनी बार, हजारों बार सुना होगा, भाई गुरुजी मुझे क्या करना है, भाई सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखो, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, यह हमें पाठ हो गया है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करो भाई। तो ये सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ऐसे होती है, हाँ, एक बार बराबर ठोस उसके कारणों के साथ पूर्ण तर्क के साथ अगर जान लिया, युक्तिपूर्वक जान लिया, युक्तिपूर्वक सर ज्ञान जो है वही आपको शांत से
यथार्थ ज्ञान बता सकता है, बाकी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। सिर्फ मुख से सर्वत्र ब्रह्म देखेंगे ना तो वो नहीं हो सकेगा। पूरा बाह्य दृश्य प्रपंच से हमारे खुद के शरीर के भीतर के विकार जब तक आप नहीं ढूंढ लेंगे ये नहीं हो सकता। तो तीनों शरीर का विवेक होगा, और ये जो आपने जो ये अवस्था त्रय विवेक किया, ये जो अवस्था त्रय को विकार समझ के ओंकार कह दिया, ये शरीर तीन शरीर का जो विवेक किया, ये पांच जो हमारे कोष जो है, ये कोष जो है वो विकारवान नामाभिधान है, वो ओंकार ही है, ऐसा उसे विचार कर लिया। ये विचार को क्या कहते हैं भाई? विवेक कहते हैं। हाँ, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक यानी क्या? कि ये सबको मैं अहमतया मेरा स्वरूप मान रही थी, अब विवेक से उसे मैं मानती हूँ पर अनित्यतया मानती हूँ। अभी विवेक आ गया इसलिए मुझे पता लग गया कि ये है तो सही पर भ्रांति है, कल्पना है, विकल्प है, ये विकार है, हकीकत में ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये है ये नहीं उसकी चिंता छोड़ दो, ये मैं नहीं हूँ ऐसा सोचना उपनिषद आपको सिखाता है। क्योंकि ये है नहीं ऐसा सोचेंगे तो ये शरीर तो दिखता है ना, आत्म साक्षात्कार के बाहर भी पूरा शरीर दिखता है तो अड़चन हो जाएगी और कंफ्यूजन इसी में रहेगा कि शरीर मन बुद्धि का संघात तो वैसा का वैसा ही है, पहले भी प्यास लगती थी अभी भी लगती है, तो फर्क क्या हो गया? भई ये मैं नहीं हूँ, मेरा अभिमान उससे हट गया, ऐसा सोचना आप शुरू कर दीजिए। तो ये जो तीनों चीजें आपने की ना, तो ये अवस्था त्रय का क्या किया? विवेक किया। ये पंचकोश का क्या किया? विवेक किया। ये तीनों शरीर का क्या किया? विवेक किया। इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक को समझाने के लिए पूरी प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, इसीलिए हम उसे पढ़ाते हैं पहले। तो यही ये विवेक है। ये एक छोटे विवेक शब्द को समझने के लिए आपको पूरा विवेक चूड़ामणि पढ़ना पड़ेगा। 500 से ऊपर उसके श्लोक है एकमात्र विवेक शब्द सिखाने के लिए। और अगर वो आपने मन लगा के कोई गुरु से पढ़ लिया तो ही ये विवेक जो है तत्क्षण आपके जीवन में आचरित हो जाएगा। तो ये जो पहला जो है ओम इति एतत् इदम् अक्षरम् सर्वम् तस्य उपव्याख्यानम् भूतम् भवत् भविष्यत्, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। अब जो दूसरा मंत्र है उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। सर्वम्

0: సోయమాత్మా సోయమాత్మా చతుష్పాత్ చతుష్పాత్. अब ये उपनिषद का जो परम लक्ष्य है, जो परम प्रयोजन है, और उसकी पूर्व भूमि का रूप क्या हो गया? पिछले तीन दिनों से जो विचार किया, बहुत संक्षिप्त में विचार है ये, फिर भी सीधा महावाक्य का उपदेश नहीं दे सकते.
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: कविः त्वमिप्रासासमिधानदिवः आवीवासन्ति वेदसाः आनो अग्ने वयोवृतं रैम्पावाकसंस्यं रास्वाजनुपमाते पूरुस्पृहं सोनीते सूयासस्तरं यो विस्वादयाते वसु होतामन्द्रजनानां माधो न पात्रा प्राप्यमान्यस्मै प्रस्थो मायन्तु ज्ञाये।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन वेद मंत्रम। द टाइटल इज शिव सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय वेदमंत्रम.com टीम। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: अच्छा मैं तो मतलब।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: അതുപോലെയാണ് ബുദ്ധി പരികല്പന എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ കല്പന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കരുതും ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പ് പോയി നിന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രതിബിംബം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കണ്ണാടി എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്? കണ്ണാടിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? കണ്ണാടി ഞാനിങ്ങനെ സ്വച്ഛമായിരിക്കുന്നു, ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നു. താൻ ശുദ്ധമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അശുദ്ധമായതിനെ പ്രതിബിംബിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. ശുദ്ധിയുള്ളിടത്തെ നമുക്ക് അഴുക്കിനെ അറിയാൻ പറ്റും, ശുദ്ധിയില്ലാത്തടത്ത് അഴുക്കിനെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇത് ഈ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അത് സ്വയം ശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അതിൽ ഈ പ്രതിബിംബത്തെ അറിയാൻ കഴിയും. കണ്ണാടിയിൽ എന്ത് രൂപവും പ്രതിഫലിക്കും, അതുപോലെ ഈ ബുദ്ധിയിൽ ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസഗന്ധങ്ങൾ സർവവും അതി പ്രതിബിംബിക്കുന്നു, പ്രതിഫലിക്കുന്നു, പ്രതീതമാകുന്നു. എന്താ പ്രതിബിംബ? കണ്ണാടിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. കണ്ണാടി സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാവനയാണ്, ഒരിക്കലും അല്ല. ഭാവിച്ചതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ മതി. ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കൊരു നിയമമുണ്ട്, ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് സൃഷ്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബുദ്ധിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയിൽ സർവവും പ്രതീതമാകുന്നു. സൃഷ്ടി ബാഹ്യമായി സംഭവിക്കുന്നു, ആന്തരികമായി ബുദ്ധിയിൽ ഇത് പ്രതീതമാകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ അനുഭവം. അതാണ് ബുദ്ധി പരികല്പന എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തിനെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നല്ല. സങ്കല്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിലും വിശക്കുന്നവൻ അന്നം സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി, അത് സംഭവിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ബുദ്ധിയാകുന്ന, ബോധമാകുന്ന ഈ കണ്ണാടിയിൽ ഇതെല്ലാം പ്രതീതമാകുന്നു. അതിൽ പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം? കണ്ണാടിയും അവിടുത്തെ ബിംബവും, കണ്ണാടി വേറെ, പ്രകാശം വേറെ, ബിംബം വേറെ, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. കാണുന്നവൻ വേറെ, ആ ഉപാധി കണ്ണാടി വേറെ, അവന്റെ പ്രതിബിംബം വേറെ, അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ദൃഷ്ടാന്തം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാകുന്നു. യഥാ നമ്മൾ ഘടാദ്യാകാരണ ഒരേ ഒരു വസ്തു, ഒരു സത്ത്, ആ സത്തിൽ തന്നെ ഈ പരിണാമങ്ങൾ സൃഷ്ടി ആകുന്ന പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു, ആ സത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടിയുണ്ട്, ബുദ്ധിയാകുന്ന ഒരു കണ്ണാടി, ബോധമാകുന്ന ഒരു കണ്ണാടി, അതിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും മറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പെ ചെല്ലു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുക, അത് സാധ്യമല്ല.
1: ഓം നമ ശിവായ. ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് ശൈവം .org, ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഹിന്ദി സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഇൻ ദിസ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ലിസൺ നായന്മാർ പുരാണം. ദ ടൈറ്റിൽ ഇസ് അയ്യടികൾ കാടവർഗോൻ നായനാർ പുരാണം, പ്രസന്റഡ് ബൈ ശ്രീ സിംഗപ്പൂർ ശങ്കര നാരായണൻ. താങ്ക് യു. ഓം നമ ശിവായ.
2: ഓം നമ ശിവായ. ഭക്തോ, അഭി ഹം സുനേംഗെ ഓർ ഏക് ദക്ഷിണ ഭാരതീയ സന്ത് യാ നായന്മാർ കി കഹാനി ജിൻകാ നാം അയ്യടികൾ കാടവർ കോൺ ഹെ. പല്ലവ് വംശ് കെ നരേഷ് അയ്യടികൾ കാടവർ കോൺ കാഞ്ചീപുരം മേ രാജ്യ കർത്തെ ഥേ. ഉൻകെ രാജ്യ മേ സർവത്ര സമൃദ്ധി ഥി, വിജയശ്രീ ഉൻകോ സഹജ് ഹി പ്രാപ്ത ഥി, പ്രജാ സുഖി ഥി ഓർ ശാസൻ ന്യായപൂർണ ഥാ. അനേക രാജാ ഉൻകി സേവാ കെ ലിയേ പ്രസ്തുത രഹതേ ഥേ. उनके राज्य में संस्कृत और तमिल भाषाएं उन्नत अवस्था में थी। ऐसे नरेश काड़ावरकोण ने शिव भक्ति के महत्व पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि राजपाट सब नश्वर और निरर्थक है। मन में दृढ़ धारणा करके उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का दायित्व सौंप दिया। उसका राज्याभिषेक कर वे स्वयं विभिन्न शिव स्थलों की तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वे जिस दिन मंदिर में जाते वहां के शिव विग्रह के प्रति सरस सशक्त तमिल में स्तुति परक पदों का गायन करते। प्रभु के प्रति ये उनके काव्य पुष्प थे। उनके गीतों से ज्ञात होता है कि वे 23 शिव स्थलों पर गए। तिरुचिरापल्ली से तिरुवट्रियूर तथा मद्रास के मयिलापुर आदि क्षेत्रों में शिव मंदिरों में शिव भक्ति पदों का गायन करते हुए उन्होंने तमिल साहित्य को समृद्ध किया। दिल्ली में नटराज के समक्ष गाए एक पद में काड़ावरकोण ने यौवन की क्षणिक स्थिति वृद्धावस्था में संबंधी जन द्वारा अवहेलना का संकेत करते हुए कहा है कि जब तक शरीर में शक्ति शेष है तिल्लई के नटराज शिव की वंदना का अवसर नहीं चूकना चाहिए। साधारण मानव में अधिकार लिप्सा तथा दूसरों को अपने वंश को अपने वश में करने की भावना एक सहज स्थिति है। शक्ति और सुविधा मिलने पर अधिकार लिप्सा एक भयंकर नशे के रूप में मानव को अपने वंश में कर लेती है। एक शक्तिशाली समृद्ध राज्य के अधिपति काड़ावरकोण का राज्य त्याग पलायन नहीं अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर शिव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है। कीर्ति समृद्धि विजयश्री तथा कला संपन्नता से परिपूर्ण राज्य का नरेश जब अकस्मात ही राज्य परित्याग कर शिव भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा तो इसमें आश्चर्य होना स्वाभाविक है, परंतु आध्यात्म चिंतन तीर्थस्थल की यात्रा भक्ति मार्ग और शिव के प्रति स्तुति गीत रचने का आकर्षण भी कोई साधारण बात नहीं है। विविध देवालयों की तीर्थ यात्रा करते हुए अंत में नटराज की नृत्य स्थली तिल्लई चिदंबरम में कुछ समय रुककर काड़ावरकोण अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। राज्य मुकुट धारण कर मन वचन और कर्म से ईश्वर सेवा का मार्ग कठिन प्रतीत हुआ, अतः काड़ावरकोण ने त्याग का मार्ग अपनाया। इसीलिए अयड़ीगल काड़ावरकोण एक महान संत या शिव भक्त है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Kridartham Srijati Prapanchamakilam. बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवन के एक एक श्वास परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो। जीवन की एक एक दिनचर्या क्रियाकलापें परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो तो भजन तो तुमने बहुत गाई है। जाके राख क्या जाही विधि राखिए ताही विधि रहिए, चाहे झोपड़ी में बास हो है? क्या है वो, चाहे महलों में बास हो चाहे झोपड़ी में बास हो, लेकिन जब परमात्मा झोपड़ी में तुमको भेजता है तब परमात्मा से तुम नाराज हो जाते हो। भजन तो गा देते हो, भजन तो गा देते हो भगवान के सामने, हे भगवान चाहे तुम महल में रख चाहे झोपड़ी में रख, तुम्हें जहां इच्छा हो वहां रखो। मुझे झोपड़ी में रखकर तुमको आनंद आ रहा हो, मैं झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं, समझे कि नहीं? मुझे महल में रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, मैं महल में रहने को तैयार हूं। लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़े मान लेते हैं ना। तो भगवान से बड़े किसलिए मानते हैं? हमको महल में रहने पर ही आनंद आएगा, इसलिए हम महल में ही रहेंगे, झोपड़े में तो किसी हालत में नहीं जाएंगे। महाराज हमको महल ही चाहिए, झोपड़ी नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम्हें झोपड़ी में रखकर हमको आनंद आता है, तो उस समय क्या कहोगे बोलो हैं? उस समय क्या कहोगे? हमको तो रस और पूरी खाने से ही आनंद आता है महाराज, हमको तो रस पूरी ही चाहिए। अब परमात्मा कहता है महाराज रस पूरी नहीं, कभी कभी बाजरे की बासी रोटी भी नमक और मिर्ची के साथ खाओ बेटा, हमको आनंद आएगा। तुम खाने को राजी हो कि नहीं बोलो? वहां नहीं होते हो तब समस्या आएगी। वहां तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मेरे द्वारा बाजरे की बासी रोटी और नमक मिर्ची से बासी रोटी खाने पर तुमको आनंद आता है, भले आवे, हम नहीं खा सकते। तुम्हारा यही कहना है कि नहीं बोलो हैं? मानो कि उस भोजन से आनंद, तुम अपने को आनंदित होना चाहते हो, इसीलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। उस क्रिया से तुम आनंदित होना चाहते हो खुद, जबकि वह क्रिया परमात्मा खुद आनंदित होने के लिए तुमसे करा रहा है, तो ये गलती हम करते हैं। तो परमात्मा के संकल्प में और हमारे संकल्पों में संघर्ष चल पड़ता है। परमात्मा के संकल्प में और हमारी दिनचर्या दैनंदिनी में संघर्ष चल पड़ता है, तब जीवन विषाद हो जाता है। विषाद आनंद नहीं होता है। आगे का श्लोक, बहुविध परितोष बाष्प पुरस्फुट पुलकांचित चारु भोग भूमि चिरपद कांक्षी सद्यमानं परम सदा शिव भावनां प्रपद्ये। बहुविध परितोष, देखो योग में योग करने वाले योगियों को योग सिद्धि से पहले योग की सिद्धि के कुछ लक्षण दिखता है। ये लक्षण उस योगी साधक के जीवन में आवे तो मानो कि योग ठीक रास्ते पर चल रहा है, पूर्व भूमिका है, वो लक्षण से अनुमान करते हैं। और योग की जो भूमिका है वही भक्ति की भूमिका है, भक्ति शास्त्र में भी वही भूमिका है। तो आपकी भगवान के प्रति जो होने वाली भक्ति है, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव कितनी पराकाष्ठा में है उसकी पूर्व भूमि का लक्षण दिखता है भक्तों में। ये स्वाभाविक भक्तों के स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। इसको फिर नाटक के रूप में आप प्रस्तुत नहीं करना, ये लक्षण भक्तों के जीवन में स्वाभाविक अभिव्यक्त होते हैं। क्या है? तो बहुविध परितोष, भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के संतुष्टि का कारण है। भक्त कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। असंतुष्टि भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने पहले एक भजन की पंक्ति गाई है, जाई विधि राखी है ताई विधि रही है, वहां असंतोष का कहां है? असंतुष्टि कहां है वहां पर। जाही विधि राखी है ताई विधि रही है, तो असंतोष कहां है वहां पर है? बाप मरे, भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं? भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं बाप मरने पर है? मां मरने पर भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं? भक्त तो नहीं होगा। जाही विधि राखी है ताही विधि रही है, पति मरने पर भगवान का भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं बोलो? होगा है, अन्यथा नहीं लेना हो। भक्त तो ये कह सके महाराज पति न मरा है, तुम तो नहीं मरे हो, ये कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं भक्तों में बोलो है? ये होनी चाहिए कि नहीं? पति मरा और रो नहीं रहा है, कोई पूछे पति मर गया क्यों नहीं रो रही हो, और खुद भगवान पूछे तुमसे तुम्हारा पति मर गया तो तुम क्यों नहीं रो रही हो, तो तुम क्या जवाब देना है तुम्हें? पति मर गया तुम तो नहीं मर रहे हो, बोलो। जाही विधि राखे राम है, इतना साहस होनी चाहिए कि नहीं बोलो ना भक्तों में। जाही विधि राखे राम बहुविध परितोष, ये अन्यथा संसार में को लोक माराध ये तुम समर्थ। कालिदास जी ने एक वाक्य लिख दिया है, ये संसार में किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी, कोई भी किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश तीसरा नाराज, एक वस्तु से वो प्रसन्न है दूसरे वस्तु से नाराज। को लोक माराध ही तुम समर्थ, तो एक ही चीज है संसार में बहुविध परितोषा, हर प्रकार से संतुष्ट होना भक्त का लक्षण है। हंसे तो ठीक, रोए तो ठीक, चले तो ठीक, बैठे तो ठीक। बहुविध परितोष बाष्प पूरा, दूसरा लक्षण बाष्प पूरा, भक्तों के भक्ति साधना के काल में, योगियों के योग साधना काल में और भक्तों के भक्ति साधना काल में बाष्प पूरा, उसके शरीर से पसीना निकलेंगे। हाँ, ये भक्तों का लक्षण है, और हम तो पसीना आने लग जाए तो घबरा जाएंगे, एसी कहां गया? स्फुट पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने का, पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने लगेगा। चारु भोग भूमि, आनंद की भूमिका है वो। चिरपद कांक्षी सेव्य माना, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, जो नित्य आनंद के अनुभव करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सेव्य, उन्हीं को ही चिरपद प्राप्त होगा उनके द्वारा। परम सदाशिव भावनाम प्रबंधे। परम सदाशिव की भावना भक्ति के शरण में प्रपद्य में जाता हूं। तो परम शिव के जो भक्ति चरण में जिसकी अनन्य भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव यह है कि बहुविध परितोष, हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्ति होगी, बाष्प पूरा। इसको अन्यत्र योग भूमि में इस तरह भी लिखा है, स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ बेपथु हो। भक्त स्तंभ हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्तंभ जड़ की तरह। भागवत आदि लक्षणों में तुम पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई सब स्तंभ हुए। भागवत में लिखा है जंगल के जो मृग शावक हैं, मृग हैं, घास खा रहे थे और मुख में जो घास लिया तो मुख ही में है। बच्चे मां के दूध पी रहे थे, चूसना बंद कर दिया, स्तंभ। जो जहां है वहीं स्तंभित हो गया। भगवान की बांसुरी का ध्वनि ऐसा मधुर था, इतना सम्मोहक था, पशु जंगल में घास चरते चरते जहां पहुंच गए थे वहीं खड़े हो गए। मुख में घास है, न वो परित्याग कर रहे हैं, न नीचे आओ उतार रहे हैं, स्तंभ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वेदः शरीर में भाव उद्रेक होने पर पसीना निकलने लगता है। अतः रोमांच लक्षण है, ये भक्ति पराकाष्ठा के लक्षण है। शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच। स्वर भंगो, कुछ बोलना चाहें बोली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलती, बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, स्वर भंग। बेपथु हो, शरीर कांपता है। वैवर्णम, उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। अश्रु प्रलय, जोर जोर से आंख से आंसू निकलने लगते। यही भक्ति के सात्विक भाव है, ये सात्विक भाव है। लेकिन आजकल देखते हैं कोई कोई ये लक्षण पढ़ लेते हैं और समाज में बड़े नामी भक्त होने के लिए ऐसे ही रोने लग जाते हैं, नाटक की तरह रोने लग जाते हैं। कोई कोई, अरे ये तो बड़ा भगवान का भक्त है, ये सिद्ध करने के लिए कहां अपने लगते हैं। बहुत देखते हैं वो है, कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, कि संकीर्तन हो रहा हो, तो कीर्तन करते करते कांपने लगते हैं। ले जी, दो थप्पड़ मारो तो उनके कांप गई। ये स्वाभाविक होनी चाहिए, ये भक्तों के लक्षण हैं। बहुविध परितोषा बाष्प पूरा स्फुट पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानाम परम सदाशिव भावनाम प्रपद्ये। आर्यचंद। अमित मुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम परिपालय भक्ति धेनु मे काम। भक्त बड़े कभी कभी बदमाशी भी करते हैं, कहते हैं अमित मुद मृतम मुहुर दुहंती। मैंने एक गाय पाल रखी है, शंकराचार्य जी कह रहे हो शिव जी से सीधे कह रहे हैं, शंकराचार्य जी भगवान शिव से सीधे कह रहे संवाद कर रहे हैं, मैंने एक गाय पाल रखी है बड़ी अच्छी गाय है। अमित मुदा मृतम मुहुर दुहंती, अमित माने असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, मुद माने प्रसन्नता का आनंद का, अमृतम मुहुर दुहंती बार बार जब चाहो तब जान चाहो वहां दू सकते हो, जितने बार चाहो उतनी बार दू सकते हो, वो देने में समर्थ ऐसी गाय मैंने पाल रखी है। विमल भवत पद गोष्ठ मा वसंती, लेकिन समस्या यह है महाराज, उस गाय को बांधने के लिए मेरे पास अच्छा गोठ नहीं है। क्योंकि भैंस को तो जहां भी बांध दो चल जाता है, सुअर के लिए बहुत साफ स्थान चाहिए है? दुनिया में गंदा सा गंदा स्थान में रख दो तभी आनंद से रहता है कि नहीं सुअर है? लेकिन गाय रह सकती है ऐसी जगह? नहीं रह सकती, इसलिए उसको बहुत अच्छा जगह चाहिए, बढ़िया गोष्ठ चाहिए। मैंने संसार में बहुत जगह घूम घूम कर देखा, उस गाय के लिए गाय के अनुकूल गोष्ठ मुझे प्राप्त नहीं हुआ कहीं भी, एक जगह मुझे मिल गया है महाराज। वो क्या है? विमल पद, विमल भगवत पद गोष्ठम, निर्मल आपके जो चरण रूपी गोष्ठ है वहीं मैं इस गाय को बांधना चाहता हूं। महाराज तुमने गाय का नाम क्या रखी है? नाम होता नहीं गाय के, गाय के विशेषण तो बता दिया, अमित मुदम अमृतम मुहुर दुअंतिम, लात मारने तो जानती ही नहीं हो गाय। हालांकि लोक व्यवहार में कहा जाता है भैंस कभी लात नहीं मारती है कहते हैं, गाय लात मारती है कहते हैं, लेकिन ये हमने जो गाय पाली है वो लात मारने तो जानती ही नहीं है। क्यों नहीं जानती है महाराज वो गाय लात मारने क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आपके लात के आश्रय में बैठी है तो किसको मारेगी वो है? भगवत पद विमल भगवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वो गाय आपके निर्मल चरण रूपी गोठ के अलावा और जगह बैठना ही नहीं चाहती है वो है। भवत विमल भवत पद गोष्ठम, आपके जो चरण है वही उस गाय के लिए उत्तम गोष्ठ है। वहां यदि आपने आश्रय दिया तो वह गाय बड़ी खुश होगी और मुझे नित्य निरंतर अमितम उद अमृतम मोर दुहंती, जब चाहो तब मैं उससे अमृत दू सकता हूं, हर वस्तु के लिए आनंद का अमृत दूध के रूप में दे सकती है। सदाया महाराज कृपा करो, हमारे एक भक्त है, एक बार हमारे पास आकर उन्होंने कहा, ये सच घटना हो, और संयोग से उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, घर में एक कुत्ता पाल रखा था, औसतन कुत्ते की आयु 14-15 वर्ष 12-14 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 15-16 वर्ष की आयु है, उसे ज्यादा कुत्ते नहीं बांसते हैं, औसतन आयु वही है। उनके बहू बेटे दोनों बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, तो एक बाई रखा था उन्होंने घर में काम करने के लिए, बहुत पुरानी बाई, अक्सर उस कुत्ते की देखभाल वही बाई करती थी, समय में खाना देना, उसको बाहर ले जाना, घुमाना, है ना, तो बाई करती थी। बाई वृद्ध हो गई तो मर गई बाई, दूसरी बाई मिली नहीं, घर में कुत्ता है 16 साल का हो गया, हो बहुत बूढ़ा है कुत्ता, अब अपने आप मर नहीं रहा है, घर में पाला हुआ है, अब उसको मारने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, पाला हुआ कुत्ता कैसे मारेगा, अब उस बूढ़े कुत्ते को कोई दूसरा पालेगा भी नहीं, उसके लिए ऐसा बंधन हो गया है कि उस कुत्ते को छोड़कर एक दिन भी कहीं बाहर जा नहीं पाती है, उसी कुत्ते के लिए समय में खाना देने के लिए घर में रहना पड़ेगा, आकर मुझे सुनाती है, महाराज और कोई बंधन नहीं है घर में, कुत्ते का बंधन है, अब क्या कहूं भाई, कहां रखें उसको, और लेके जाएं तो कहां लेके जाएं, छोड़ के जाएं तो किसके यहां छोड़ के जाएं, वो जब तक नहीं मरेगा तब तक मुझे उसके अधीन में होकर घर छोड़ ही नहीं पाती हूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरी जो गाय है ऐसे विलक्षण है वो, है अब इस गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद नहीं करती है, करेगी, आजकल के बहू पसंद करेगी, सास ने ये गाय पाल रखी है, मान लो भगवान शिव की भक्ति रूपी कामधेनु सास ने पाल रखी है, अब भक्ति रूपी गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद करेगी है, बेटे के यहां जाओ तो बेटा पसंद करेगा, तो तुम्हारे लिए ये मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो, है तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, अमितम उदम अमृतम मुहूर्त दुहंतिम, बार बार तुमको अमृत की प्राप्ति हो रही है, छोड़ भी नहीं सकते, और संसार में कोई भी तुम्हारे द्वारा धारण की हुई भक्ति को किसी को देने जाओ कोई लेने को तैयार होता नहीं, आज के जमाने में कोई भक्ति लेने को तैयार है, बोलो, कभी कभी तो ये बिना मतलब का भक्ति हमने शुरू कर लिया, मुसीबत हो गया। कई बार शालिग्राम लाते हैं घर में वो शालिग्राम मुसीबत हो जाता है, मुसीबत हो जाता है। लेके जाएं तो अमेरिका कहां लेके जाएंगे, तुलसी का पत्ता मिलता नहीं। महात्मा ने शालिग्राम दिया था रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाना, यहां थे तो चढ़ाते रहे, अब अमेरिका जाना है तो लेके जाएं तो वहां तुलसी का पत्ता मिलेगा नहीं, यहां छोड़ के जाएं तो बहुत चढ़ाएगी नहीं तुलसी का पत्ता, मुसीबत हो गई कि नहीं, बोलो क्या करें। भक्ति भी कभी कभी मुसीबत होती है, शंकराचार्य जी को हो गई, तुम्हें नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये भक्ति काम देनु, भक्ति देनु काम में काम, एक ही गाय है वह आपके विमल भवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वहीं बैठना राजी है, इसलिए हम आपके चरण रूपी गोठ में उस भक्ति को बांध देना चाहते हैं। सदय पशुपते सुपुण्य पाताम, मेरे अनेक जन्मों के सत्फल सत्कर्मों का फल परिपक्व हुआ तब जाकर आज मुझे बढ़िया गोठ प्राप्त हुआ, गोठ प्राप्त हुआ। कौन सा गोठ? भगवान के चरण रूपी गोठ की प्राप्ति हुई है बात। अब ये भगवत भक्ति रूपी गाय इसी गोठ में मैं बांधता हूं। मम परिपालयः, महाराज इस गाय को पालने का काम आपका है, आपके प्रति मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी रक्षा करने का काम आपके है, आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं। हाँ? मम परिपालय भक्ति देनु में ये काम, मैं और किसी को पत्नी को पालो मैं नहीं कहूंगा, बेटे को पालो ये नहीं कहूंगा, हाँ? मां को पाल लो, बाप को पाल लो, मुझे पाल लो ये नहीं कहूंगा। एक भक्ति जो मेरे पास है उसको आप पालन करो, अपने गोठ में पालन करो, और ताकि अमृत दूध मैं पी सकूं। बोलो, भगवान को तो गोठ के गोठाला बनाने चाहते हैं शंकराचार्य जी, ग्वाला बना दिए भगवान के। बोले गाय भी तुम्हारी है, गोठ भी तुम्हारा, पालन पोषण तुम ही करो, हमको तो अमृत पान करना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण

की जय। सदघन चिदघन आनंद घन, कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय, आशुतोष चंद्र मौली चंद्र चूड़ चंद्र नाथ चंद्र शेखर सम सदाशिव की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रातःकाल की इस पावन बेला में बैठकर हम लोग विचार कर रहे थे शिव तत्व पर, शिव महिमा महिमन पारंते, जिसकी महिमा अपरम पार है, जिसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, जो अनादि अनंत परम सत्य है, शाश्वत है, नित्याय शुद्धाय नित्य शुद्ध है, ऐसे परात्पर शिव जो हम सबों के अंदर आत्म रूप से स्थित है, जो सृष्टि से पूर्व और सृष्टि के रहते और सृष्टि के न रहने पर भी, जो सृष्टि के इन तीनों कार्यों को सृष्टि स्थिति विनाश आया, इन तीनों कार्यों को नित्य दर्शन करे, भूत वर्तमान भविष्य में जो व्याप्त रहे, वही परम तत्व शिव है त्रिलोचनाय। यही उनके तीन नेत्र हैं, इस पर हम कल चर्चा कर रहे थे। ये तीन काल ही, वेदत्रय ही भगवान शिव के नेत्र है, शिव और शंकर। शंकर कहने से ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जो सगुण और साकार रूप में, शिव सहित जो माँ गौरा के संग नित्य विराजने वाले भगवान शंकर, जो सृष्टि के प्रलयंकर देव हैं, और वही निर्गुण निरात्यंत शुद्ध सात्विक स्वरूप में, कहीं कहीं ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शिव शंकर तामस रूप है, पर ये तामस का अभिप्राय ऐसा तामस नहीं समझें कि भगवान तमोगुणी हैं, शंकर तमोगुणी हैं, वो तमोगुण के कारण सृष्टि का संहार करते हैं, संहारकार देव है, रुद्र देव है। रुद्र का अर्थ एक ये भी होता है रुलाने वाला। बोले रुलाता कौन है, कौन किसको रुलाया जाता है, किसको त्रास दिया जाता है, बोले वो जो विधि विहीन कार्य करते हैं, जो विधि विमुख होकर चलते हैं, जो विधि की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन्हें भगवान शिव उनके कर्मों का दंड देने के कारण उन्हें रुद्र भी कहलाया जाता है, रुलाया जाता है, रुलाने वाला। अर्थात कर्म के भोग को जो प्रदान करे, क्योंकि कर्म करते समय हम इतनी सहजता के साथ करते हैं, परंतु जब उसका परिणाम भोगने को मिलता है तब हमें बड़ा कष्ट होता है, रुदन करते हैं, और रुदन करके रो करके हम उस पीड़ा को सहन करते हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम रुद्र हुआ। यूं तो रुद्र ब्रह्मा जी की भ्रगुटि से एक पुरुष का जन्म हुआ, और जो ब्रह्मा जी की भ्रगुटि से जन्म लिए और वो रुदन करने लगे, तो इसीलिए उनका नाम रुद्र रखा गया। परंतु भगवान शंकर जो रुद्र रूप में हैं, साकार रूप में हैं, उन्हें तमोगुण के कारण सृष्टि का संहार कारक देव भी कहा गया है। परंतु ये संहार में भी भगवान की कृपा ही है। जैसे बहुत समय से, बहुत देर से बालक खेल खेल रहा हो, और खेलते हुए बालक को इस बात की सुध नहीं है
कि उसे कितनी देर खेल खेलते हुए हो गया है। वो अपने खेल में रमा हुआ है, परंतु पुत्र वत्सला माँ, उसके हृदय में पुत्र की ममता है, पुत्र के प्रति वात्सल्य है, स्नेह है, और उस स्नेह के कारण, उस वत्सलता के गुण के कारण माँ देखती है कि बच्चे को बहुत देर हो गई खेलते हुए, अब इसे विश्राम की आवश्यकता है। जब बालक के विश्राम की माँ को चिंता होने लगती है, तो माँ जिन खिलौनों के साथ बच्चा खेलता है उन खिलौनों को उसके सामने से अलग कर देती है और बालक को पकड़कर बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठा लेती है और गोद में बिठाकर बड़े स्नेह के साथ उसे थपकी दे करके, उसे थपकी देकर, गोद में लोरी देकर बालक को सुलाकर उसे परम विश्राम देती है, आराम पहुंचाती है। भगवान की इसी प्रकार की जीव को आराम देने की जो एक लीला है, सृष्टि को उत्पन्न करने की लीला, सृष्टि के पालन पोषण की लीला और सृष्टि के संहार की लीला, ये लीला भी भगवान की अत्यंत स्नेहमय है। ये प्रेममय लीला, स्नेह के वश भगवान देखते हैं कि अनादि काल से जीव संसार में अविद्या के, अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु के साथ संसार सागर में ये गोते खा रहा है। कभी डूबता है, कभी निकलता है, कभी बहता है, इस प्रकार इसे बहुत समय हो गया है। अब इन जीवों को परम विश्राम देकर सुख पहुंचाना है। भगवान उसके लिए एक लीला करते हैं, जिस लीला का नाम संहार लीला है। समस्त जीवों को अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संस्कारों के साथ भगवान उन्हें अपने में आत्मसात कर लेते हैं, तो उसी का नाम प्रलय लीला है। भगवान शिव प्रलयंकर देव हैं, प्रलय के कर्ता हैं, अर्थात सृष्टि के संहार देव है, कारक देव हैं। ये सोच करके कहा गया कि भगवान शिव तामस देव हैं। तामस देव का अर्थ ये नहीं है कि वो तमोगुणी हैं, अर्थात निस्त्रय गुणे, वो तीनों महिमन स्तोत्र में आप पढ़ते हैं ना कि भगवान शिव क्या है। बोले प्रभु आप तो निस्त्रय गुणे, तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, और प्रकृति से परे होते हुए भी स्वयं अपनी माया को अंगीकार करके स्वयं शिव अपनी ही शक्ति की सत्ता को स्वीकार करके, भगवान शिव इस प्रकार शक्ति के साथ युक्त हो जाते हैं कि शक्ति की महिमा को बताने के लिए, शक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान अपने आप को न्यून करके, कहीं कहीं शक्ति की प्रधानता दिखाई पड़ती है तो कहीं कहीं शिव की प्रधानता दिखाई पड़ती है। भगवान शक्ति को जब प्रधान रूप में स्वीकार करते हैं सृष्टि के कार्य के लिए, तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं गौण हो जाते। इसीलिए तो भगवान शिव के स्वरूप को देखकर शंकराचार्य ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु चिदाभस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटा

देवी प्रभु चिदाभस्मालेपो, शरीर में शमशान की भस्मी का लेपन करने वाले चिदा की राख को भस्म को जिन्होंने भस्मांग अंग में धारण किया हो, शरीर में मला हो, बोले शीत लगती है। भगवान शंकर कैसे रहते हैं? दिगंबर रहते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है जिनके अंदर, जिनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। दिगंबर रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज है नारायण। अर्थात जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर हैं। बाहर भीतर से एक होने का प्रतीक है। हमारे यहाँ साधुओं में भी दिगंबर साधु होते हैं, जैनियों में भी दिगंबर होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और हमारे में नागा सन्यासी कहते हैं वस्त्र नहीं देते हैं। बोले ये एक अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, अपने आप को निरावरण रखना। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम बाहर रहेंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे कि हम पैदा हुए थे। जब हम पैदा हुए थे तो कोई वस्त्र लेकर पैदा नहीं हुए थे, वस्त्र तो हमें पहनाया गया और पहनाना सिखाया गया, और धीरे धीरे वस्त्र हम अपने आप में धारण करने लगे और अपने निरावरणता को हम छुपा रहे हैं। पर दिगंबर का अर्थ ये है कि जिसने अपने आप को अंदर बाहर से एक कर लिया हो, निर्विकार कर लिया हो। दिग कहते हैं दिशाओं को, जिन्होंने चारों दिशाओं को ही, दसों दिशाओं में अर्थात अपने आप को इतना व्याप्त कर लिया है, व्यापक रूप में देख लिया है कि दूसरा कोई उसे नजर ही नहीं आता है। लज्जा कब आती है? जब मुझे कोई दूसरा न देख ले। हम अपने आप को छुपाते हैं, हम अपने आप को ढकते हैं। किस लिए? इसलिए कि कोई दूसरा मुझे न देख ले, किसी की दृष्टि मेरे में न पड़ जाए। अर्थात तो वो दिगंबर वो दृष्टि है जिसकी दृष्टि में सर्वत्र आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्व दिशा में सब जगह वो केवल एक आत्म भाव का दर्शन करता है। उस आत्म दृष्टि को दिगंबर कहा गया है, ऐसी उसकी स्थिति है। तो भगवान शिव दिगंबर हैं, और दिगंबर को बोले शरीर में धारण करने के लिए उनके पास क्या है? चिदा की एक भस्मी तो है, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था।

भगवान शिव अपने अंगों में धारण करते हैं और इस वस्त्र को ही भस्म को ही वस्त्र के रूप में सेवन करते हैं। ठंड लगती है आजकल भी, जो दिगंबर रहने वाले महात्मा होते हैं उन्हें जब ठंड लगती है तो सारे शरीर में भस्म मल लेते हैं। भस्म मल लेने के कारण उसे उस सर्दी का उस शीत का उनको प्रभाव व्याप्त नहीं होता है। भगवान शिव ऐसे सनातन हैं कि चिदा की भस्मी को शरीर में धारण करते हैं। चिदा भस्मा लेपो गरल वसनम दिपट धरो, गले में विषैले सर्पों को धारण करते हैं। सर्प भी भगवान शंकर ने तो ऐसा नहीं कि केवल शिव ही सर्प को धारण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि यदि भगवान शिव गले में धारण करते हैं तो विष्णु भगवान भी कुछ कम नहीं, वो तो सैया बना के ही सो जाते हैं। वो तो उसी के सैया के रूप में सर्प का सेवन करते हैं। शतपथ ग्रंथों में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार पार्वती से मिलने की इच्छा हुई सिंधु सुता लक्ष्मी के मन में। सिंधु सुता लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो पार्वती को जाकर मिले। जब पार्वती से मिलने के लिए हिमालय में पहुंची तो लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी हैं, रत्नाकर उनके पिता हैं, भगवान नारायण की प्रियाएं, उन्हें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी जी जब गई तो अपनी चमक दमक ठाट बाट के साथ सज समर के बहुत सुंदर बन करके बड़ी अच्छी तरह से गई और वहां माँ पार्वती हिमालय में बैठी हुई हैं, भगवान शिव के संग में रहती हैं, अवधूत उनके पति हैं, अवगण दानी है, दान में दे दिया सब कुछ, रावण को लंका दे दी बनाई थी बड़ी मुश्किल से, सब दे दिया वो भी कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पर्वत में रहते हैं और कोई वस्त्र अलंकार आभूषण उनके संग में कुछ है नहीं। भगवान शिव तो दिगंबर धारी मृग चर्म धारण करने वाले, गज चर्म धारण करने वाले, हाथी ने तपस्या की, गज ने तप किया और तब करके भगवान शिव ने वरदान मांग लिया, प्रभु मैं सदैव आपके संग रहूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा चर्म का हम वस्त्र बनाकर अपने अंग में धारण करेंगे। गज चर्म धारण करने वाले, बागंबर पर बैठने वाले, गज चर्म जिन्होंने हाथी का चर्म वो भी धारण किया हो, और ऐसे भगवान शिव जिनके पास कुछ नहीं है देखने में बाह्य रूप में, तो लक्ष्मी जी ने जाकर भगवान शिव उस समय ध्यानस्थ समाधि में थे, लक्ष्मी जी पार्वती जी से मिली। और ये संसार में होता है कि जो धनवान बहन होती है ना, दूसरी यदि कमजोर हो तो थोड़ा उस पर अपना रौब मारती है, उसे ये वो एहसास कराती है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से व्यंग किया भगवान शिव के लिए, क्वास्ते भिक्षुकम, भिक्षुक शिव कहाँ है, व्यंग है कि क्वास्ते भिक्षुकम, भिक्षुक शिव कहाँ, भिकारी शंकर तेरा कहाँ है। पार्वती जी को लगा कि ये तो मेरे पति को भिखारी बता रही है, तो पलट कर पति पर व्यंग हो गया है। अब लक्ष्मी जी ने दूसरा अपना बाण निकाला। लक्ष्मी जी कहने लगे अच्छा बताओ, क्वास्ति पन्नग भूषणम, जो पन्न सर्प को आभूषण बना करके अपने गले में डालने वाला जो शिव है सफेदों का जैसा, वो कहाँ है, वो कहाँ है बताओ। तो लक्ष्मी पार्वती जी ने सोचा कि इसने तो मेरे पति के ऊपर फिर इसने व्यंग कर दिया, तो कहा शेष शयनश्चस्ति, शेष के ऊपर सोता हुआ पाताल में होगा, चली जाओ उसके पास।

0: सेल्स के पलंग पर जो सोया हुआ हो वहीं चली जाओ सेल्स को बनाकर, वहां पर भी व्यंग चलानी। तब क्वास्ति पशुपति, तेरा पति तो पशुपति है, भगवान शंकर का नाम है ना पशुपति, गिरिजापति पशुपति। तो बोला कहाँ है तेरा पति पशुपति, पशु माने पशु, अज्ञान, जानवर को पशु कहते, पशु का अर्थ है अज्ञान। जानवर किसी को हम ये तो कहते हैं, ये तो बिल्कुल जानवर जैसा है, माने किसी के अज्ञान की पराकाष्ठा को हमें इंगित करना होता है, इशारा करना होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, बिल्कुल पशु जैसा इसका आचरण है। परंतु कभी गंभीरता से सोचना नारायण, जिन पशुओं के साथ मनुष्य की हम तुलना करते हैं, कोई कोई इंसान तो ऐसे होते हैं कि पशु के साथ तुलना करने के योग्य भी नहीं होते। एक बार इन पशुओं ने, इन पक्षियों ने मिलकर के आपस में मीटिंग की। मीटिंग की, क्या मीटिंग की कि देखो हमारा बड़ा भारी अपमान होता है, जहां कहीं भी हमारे में कोई कमी गिननी होती है तब हमें यही कहा जाता है कि ये पशु है। परंतु जब कभी मनुष्य की प्रशंसा करनी होती है तब भी हम किससे इनकी तुलना करते हैं, किसी की बहुत अच्छी आंखें हो तो क्या बोलते हैं, क्या सुंदर आंख है इसके, मृग के जैसे, ये तो वही सुंदर मृग नहीं है। सुंदरता में भी पशुओं का उपयोग करते हैं, पक्षियों का उपयोग करते हैं। और कभी किसी की बुराई करनी होती, क्या शकल लेके बैठा हुआ बंदर की जैसे, तो हम वहां भी उसका वो करते हैं। अच्छाई सुंदरता बुराई में, अच्छाई बुराई से जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वो तो है पशु पक्षियों से, तो हम तुलना करते हैं। मनुष्य सोचे कि वास्तव में वो है क्या, क्या वास्तव में वो है क्या जिसकी तुलना पशु और पक्षियों के साथ हो रही है, वो आखिर है क्या, वो पक्षी है अथवा पशु है। यदि उसके अंदर ज्ञान है, स्वस्वरूप का बोध है, तो वह परम परमानंद स्वरूप सर्वात्मा शिव है। यदि उस विवेक से वो शून्य है तो पशु पक्षी से अधिक उसका कोई महत्व नहीं है। ये सुंदरताएं ये पशुओं में भी होती है और पक्षियों में भी होती है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं चीजों से हमारी विशेषता है। तो अज्ञान का धोतक है पशु, भगवान का नाम है पशुपति, अर्थात जो अज्ञानी जीव है, जीव भाव है पशु, और जीव भाव के जो स्वामी है, जीव अज्ञान के कारण है, और इस समस्त जीवात्मा के जो पति है, स्वामी है, उन्हीं का नाम पशुपति है, भगवान शिव। इसलिए पशुपति मंत्र ही क्या है, पशुपति को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र से भगवान शिव पशुपतिनाथ को प्रसन्न किया जाता है। ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः, ये मंत्र है भगवान पशुपति का। अर्थात भगवान शुभ करने वाले, शुभ शुभ कुरु कुरु, शुभ शुभ करने वाले, अर्थात शुभ को शुभ करने वाले भगवान शिव हैं, पर उनका नाम है पशुपतिनाथ। कहाँ है पशुपति, तेरा पति जो पशुपति है वो कहाँ है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, गोकुलश्च अस्ति, गोकुल में चली जा, वहां गाय चराते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ तुझे नजर आ जाएगा, चली जाओ वहां। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे कोई भी तर्क यहाँ काम नहीं किए, व्यंग काम नहीं किए, इनका बराबर मुझे उत्तर मिलता रहा, समानता होती रही। तो फिर लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तो बहन देख, तूने जो निर्णय लिया अपने पति के वरण में, मुझे लगता है कि वो तेरा वरण कुछ अच्छा नहीं था। अभी भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम अपने निर्णय को बदल लो। तुमने जिस पति का वरण किया है वो तो अवधूत है, दिगंबर है और अमंगलिक रूप को धारण करने वाला है, चिता के भस्म आदि को। इसलिए तुम अपने निर्णय को, मैं समझती हूँ कि अभी भी तुम्हें बदल देना चाहिए।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: யுவான் சிஷ்ய ஆர் குரு கைசா ஹோதா ஹை? உல்டா. யஹாம் பில்குல் உல்டா ஹை. யே தோ பில்குல் யுவான் ஹை और शिष्य क्या है? सब बुड्ढे हैं. दूसरा आश्चर्य, गुरु मौन के द्वारा ही व्याख्यान किया. गुरोस्तु मौन व्याख्यानम. और शिष्य के सब संशय का उच्छेद हो गया, नाश हो गया. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते சர்வ சம்சயாஹ க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. அபி தேகோ ஆச்சரிய கா ஹை. சிஷ்ய விருத்த ஹை, ஜோ ஜீவ் ஹோதா ஹை, கோட்டி கோட்டி சரீர் மே ஜன்ம கரண கர்கே தியாக கர்தே கர்தே வோ க்யா ஹோ கயா ஹை? அபி क्या हो गया? वृद्ध हो गया है. एक भक्त ने कहा भगवान को, मुझे आगे आने वाले दुख की कोई चिंता नहीं है मरने के बाद, क्योंकि मैं सब शरीर में जाके सब प्रकार का दुख भोग चुका हूं. मेरे लिए कोई दुख नया नहीं है. पर आज एक नया दुख आ गया है. भगवान कहते क्या दुख है? कि आप सामने हैं और फिर भी मैं दुखी हूं, ये दुख नया है. आपकी सन्निधि में अर्जुन विषाद योग हो रहा है. देखो ये, इसको दूर करिए. तो दूसरा अर्थ होता है वृद्धा शिष्या का. अर्थ होता है जो शिष्य बुद्धि से परिपक्व हो चुके हैं. कल मुझे टाइम नहीं मिला बोलने का. दो चीज होती है समय में, देह की दृष्टि से और मन की दृष्टि से. आप खाते पीते रहे और विटामिन की गोली लेते रहे, च्यवनप्राश भी खाते रहे, थोड़ा योगासन करते रहे, जो भी है, ये शरीर क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है. एजिंग, उम्र होना हमारे हाथ में नहीं है, उनको रोक भी सकते हैं. नहीं है. यू एज एवरी डे, यू एज. पर एक बात याद रखना, जैसे शरीर की उम्र होती है, इसके साथ साथ मन भी परिपक्व होता है कि नहीं होता है? वही बचपना अंदर है अभी, वही सब खेल खिलौने की चीज अच्छी लगती है, वही नाटक चेटक अभी भी वही अच्छा लगता है. देयर इज नो ग्रोथ इन साइड. इसके लिए यत्न किया जाता है. फिजिकली यू एज, इमोशनली यू हैव टू मैच्योर. मेरे लड़के ने मुझे स्वामी जी फोन नहीं किया, अमेरिका गया, हमको ईमेल भी नहीं भेजता है, ये सब क्या है? अंदर गड़बड़ है. अभी तेरे को बच्चे की क्या जरूरत है? वो अपनी जगह है, तू अपनी जगह भजन कर. स्वामी जी आप ऐसी बात करते हैं, हमको ये सब क्या है? अंदर गड़बड़ है. इन्होंने ये कहा, उनका ये हो गया, अभी भी वही बात है. देयर इज नो, यू मे एज फिजिकली, इनसाइड बचपना. 80 years child, 80 साल का बच्चा. तो इसको कहते हैं कि आंतरिक विकास के लिए, परिपक्वता के लिए, ये कर्म करते करते अमुक प्रकार की भावना से जब कर्म करते हैं तो चित्त में प्रसाद आता है, परिपक्वता आती है, जिसको श्री कृष्ण ने संयुक्त है, इसको कहते हैं मैच्योर योगी. माने द्वंद्व सहिष्णु बने. सुख दुख लाभा लाभे जया जयो इस सब में समत्व जिन्होंने प्राप्त किया है, ये नहीं कि आप समत्व प्राप्त कर लो, उसका उपाय बहुत भारी है। उनमें से जो गुजरा है आज कुछ भी हो जाए वो प्रसन्न चित्त है और कुछ भी आगे होने का है उसके लिए भी तैयार है। ये जो पॉइज है इनसाइड, इसको कहते हैं वृद्धा। शिष्य सब है वो तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबके सब क्या है तैयार बैठे हैं। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में 60,000 ऋषि मुनि विराज मानते हैं, सब वयोवृद्ध, और सुखदेव जी 16 साल की उम्र, युवा। पर इस कार्थ यात्रा शरीर से नहीं मतलब है, वो जानता है कि आत्मा नित्य है सत्य है, इसलिए देह की उम्र के साथ आत्मा की उम्र आगे बढ़ती नहीं है पीछे घटती नहीं है, क्योंकि वो क्या है नित्य है इसलिए युवान है। बराबर समझ में आया? अभी दूसरा कह रहे शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्य के सब संशय दूर हो गए। इस संशय का अर्थ होता है ना समझी, ये ठीक है कि ये ठीक है। ब्रह्म विद्या का अध्ययन करे कि संसार का काम करे, इस उपाय से हमारा दुख होगा दूर होगा कि इस उपाय से दुख दूर होगा, आत्मा एक है कि अनेक है, मरने के बाद आत्मा कहां जाता है। अभी पहले बताया आत्मा अद्वितीय एक है व्यापक है, फिर जाता कहां है? देखो दो प्रश्न में गड़बड़ती नहीं, वो कहते आत्मा तो स्वामी जी नित्य अजर अमर है व्यापक है और फिर मरने के बाद जाता है। हे व्यापक जाएगा नहीं और जो जाएगा सो व्यापक होगा नहीं, अल्प में गति होती है व्यापक में गति नहीं होती है। सबका आत्मा अलग अलग दिखता है क्योंकि आपका दुख मेरा दुख अलग है, इसलिए आत्मा भिन्न है कि एक है, ये सब संशय होते हैं। जिज्ञासु का नाम ही क्या है, डाउट्स आर देयर। मैं ब्रह्म को जान सकता हूं कि नहीं वो भी डाउट है। प्रमाण से ज्ञान होगा कि दूसरा कोई उपाय करने से ज्ञान होगा, डाउट है। तो जब तत्व ज्ञान से बोध हो जाता है तो सर्व संशय की निवृत्ति हो जाती है। सीधा दृष्टांत देखो, अगर रस्सी का ज्ञान नहीं है तो उसको सर्प है कि माला है कि भूछिद्र है कि दंड है, ये क्या है संशया। एक बार रस्सी का ज्ञान हो गया फिर संशया सब दूर हो गए। एक बार अपने को जान लिया, मैं दुखी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं छोटा हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब क्या है संशया। सर्व संशय की निवृत्ति उन्होंने करी। अभी सबसे बड़ी बात है, यहां लोग गड़बड़ा जाते हैं, मौन व्याख्या। मौन मानी होता है चुप रहना, बोलना नहीं। देखो आप लोग भी शांति से बैठे, मौन है इस समय। गुरु अगर मौन होकर प्रवचन कर सकता है क्या? मुझे हर रोज एक ही काम करना है, गिरीश पे लाएंगे, मैं आगे एक घंटा चुपचाप बैठा रहूंगा और चला जाऊंगा, इसमें प्रवचन होगा? प्रवचन में मौन नहीं है, मौन में प्रवचन नहीं है। तो मौन व्याख्यानम का अर्थ क्या होता है कि समग्र वेदांत शास्त्र कोई शब्द के अर्थ का निरूपण नहीं करता है, शब्द का सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्मात्मिका का बोध करा सके। शब्द का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बांधित है। मैं कहूंगा घड़ा तो आपको दिखता है, मैं कहूंगा कुर्सी तो आपको दिखती है, मैं कहूंगा कलकत्ता तो आप अनुमान कर सकते जैसे बॉम्बे सिटी है तो वो भी सिटी है, लोनावाला ऐसे, तो ये सब अनुमान से जानते हैं, शब्द का अर्थ है। पर जो ब्रह्मात्मा है वो कोई शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है, चीज नहीं है बाहर की। और उसका बोध कराने के लिए अभिधान वृत्ति से, मानी शब्द के अर्थ के रूप में नहीं, उसके लिए लक्षणा की जाती है। तो जिसको इंप्लाइड मीनिंग इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करके जो शब्द से नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल करके उसको समझाया जाता है, इसका नाम क्या है? प्रमाण। और वो लक्षणा से बोध कराता है। इसलिए कहते हैं मौन व्याख्यानम, जो समझना है वो तो साइलेंस ही है। आगे आएगा अगले के श्लोक में, तो इस प्रकार से मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणै आवृतम ब्रह्म निष्ठैहि आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणा मूर्ति मीडे। मेरे पीछे बोलना, निदये सर्व विद्यानाम विषजे भव रोगिणाम गुरवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्ति दक्षिणामूर्तये नमः नमः। प्रफी भावे हमारा ये नमस्कार है, किनको नमन कर रहे हैं? श्री दक्षिणामूर्ति को। दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सह दक्षिणा मूर्ति ही शिवः। दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सह शिवः दक्षिणा मूर्ति। आप लोग को मालूम है चार दिशा मुख्य है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दूसरी बात ये भी मालूम होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, मृत्यवे नमः। दक्षिणाभिमुख जो है दक्षिणा दिशा मृत्यु की है, कोई दक्षिण दिशा मृत्यु नहीं चाहता है। और उत्तर दिशा जो है वो अमृत स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लोह चुंबक को भी रखेंगे तो जो उत्तर दक्षिण बताता है, तो आकर्षण वो सुई में जो है वो उत्तर की ओर है, और दूसरा जो भाग है फिर वो दक्षिण बताता है। अट्रैक्शन इज ओनली द नॉर्थ नॉट इन साउथ। इसलिए जो भी आनंद सुख चाहता है वो अपना मुख कहां रखेगा? उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा की ओर कोई देखना नहीं चाहता है, और मरने के बाद हमारे चरण दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं, इसलिए सोते भी नहीं लोग दक्षिण दिशा में, चरण करके नहीं सोते हैं, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है। अब गुरु क्या है? गुरु दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिणा व्हाट है? दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति यस्य, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। क्यों? मृत्युंजय। इस विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मा मृत्यु जन्म रहित है, ये बोध जिसको हो गया है। अहम व्हाट अजह, मैं जन्म रहित हूं। क्यों? नित्य हूं। जो काल में आता है उसका नाश होता है, आत्मा काल का भी प्रकाशक है, वो नित्य आत्मा मैं हूं। इसलिए गुरु जो है वो मृत्यु को तर गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए उसको दक्षिण दिशा का कोई भय नहीं है। गुरु दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो शिष्य कौन सी दिशा को देख रहे हैं? उत्तर दिशा को देख रहे हैं। और इसलिए ये शंकर भगवान दक्षिणाभिमुख होकर जो शिष्य मोक्ष चाहते हैं उनको उपदेश करते हैं। ठीक है, अर्थ आ गया? दक्षिणा मूर्तये नमः। और कैसे है? सर्व विद्यानाम निधये। दो प्रकार की विद्या है, द्वे विद्ये वेदितव्य, परा च अपरा। परा परमात्मक विषय विद्या, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान जिस विद्या में है वो विद्या का नाम क्या है? परा विद्या, ब्रह्म विद्या, भूमा विद्या, गीता माता, ये सब आ जाएगा। आत्मा एक अद्वितीय है तो ब्रह्म विद्या भी कैसी है? एक है। विषय एक है इसलिए विद्या भी कैसी है? एक है। अनात्मा कितने हैं? गुजराती में गण्या गण्या ही नहीं, वीण्या तो है मारी बुद्धि में माई नहीं। कहां है इतना है? एवरी ईयर वन डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज दे डिस्कवर, दैट इज कॉल्ड साइंस। ये भी जानना है, इसको भी हमने जाना है करके, द गॉड पार्टिकल। तो अपरा विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण अनेक है, ये सब विद्या परा और अपरा जिसमें है वो है दक्षिणामूर्ति। आपको एक बात बताता हूं, ज्ञान सिर्फ ईश्वर में ही है, ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। सब विद्या का खजाना, सब विद्या का आश्रय परब्रह्म ही है। अगर इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं मुझे 3 घंटा चाहिए। ओके, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रस्य योनि कारणम तस्मात् शास्त्र योनि। ये समग्र शास्त्र जिससे प्रकट हुए हैं वो भी बिना प्रयास, तस्य निष्वसितम वेदः ऋग्वेदः यजुर्वेदः। इस मंत्र को भी लोग नहीं समझते, सीधा मंत्र है। लोग ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं, भगवान के निश्वास का नाम ऋग्वेद है, भगवान की श्वासोश्वास क्रिया में वेद प्रकट होते। ये नहीं है भैया, वहां लिखा है कि जैसे हमारी सांस चल रही है इज इनवॉलेंटरी एक्शन, यू डोंट ब्रीथ, ब्रीथिंग हैपन्स अनलेस यू आर फॉलोइंग रामदेव बाबा, ये सब करेगा। देखो प्राणायाम कुछ करेगा तो प्राणायाम है, नहीं करेगा तो क्या है? श्वासायाम है ना। तो अपने आप सांस चलती है, तो सांस कैसे अनायास बिना प्रयास से चलता है, ऐसे जिस परब्रह्म से ये समग्र वेद आयास के बिना, चिंतन के बिना, सोचने बिना प्रकट हुए हैं, इसी का नाम है परब्रह्म, जिससे सब विद्या आई है। एक विद्या का ज्ञान प्राप्त करते करते हैं बाल क्या हो जाते हैं? अगर रहे तो सफेद हो जाएगा। प्राय पढ़ने वाले के बाल क्या होता है? चले जाते हैं, है हमारे साथ पढ़े हैं इनके चले गए। बड़ा फायदा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बालनेस को क्या बोलते हैं? गंजा, गंजा, गंजा होने में बहुत फायदा, हमको अच्छा लगता है। एक तो है कि जब शावर मानी स्नान करने खड़े रहे थे, पूरा फायदा होता है उसका, बाल रुकने वाला नहीं है बीच में। दूसरी बात यह कीड़े नहीं पड़ते हैं। तीसरी बात यह कंगन की जरूरत है क्या, कंगी की जरूरत नहीं है। चौथी बात है लड़ाई में कोई बाल पकड़ के खींच नहीं सकता, कितना फायदा है ना। और कभी जरूर पड़े तो दिखा दो, आईने की जगह यह भी काम करेगा, तो एडवांटेज। आइए, तो यहां कहते हैं कि सर्व एक एक विद्या प्राप्त करने में कितनी मेहनत है, एक एक विद्या में इतना समय लगता है। और अगर आप एक पुस्तक लिखे, इफ यू ऑथर अ बुक, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, वो भी कितनी टेक्स्ट को देख देख के उसका उद्धरण लेके लिखेंगे। मानी जिसने कुछ लिखा है उसकी बुद्धि को हम समझ सकते हैं कि कितनी विशाल होगी। पाणिनि आप पढ़े, अगर इसको कहते हैं 600 और 5000 बिफोर बीसी, इट वॉज देयर, व्हाट अ क्लासिकल लैंग्वेज, ऑल रूल्स आर देयर। पाणिनि व्याकरण के नियम जिन्होंने प्रकट किए उसकी बुद्धि कितनी होगी। तो जिससे सब वेद प्रकट हुए उसकी बुद्धि को क्या कहना, किमु वक्तव्यम तस्य सर्वज्ञत्वम, क्या बात करना सर्वज्ञत्वे, ये हमारा ईश्वर। पहले समझो ईश्वर सर्वज्ञ कैसे हैं, और वो ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारे स्कूल में ये प्रार्थना को बहुत गुजराती में बोलते थे, ऊंडा अंधारेती प्रभु परम तेज ते तो लई जा, देर कैन नॉट बी बेटर प्रेयर, मोस्ट यूनिवर्सल प्रेयर। आप सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुनिया में जितनी समस्या है सबके सब किसके कारण है, ना समझी के कारण, बेवकूफी के कारण है। आपके घर में समस्या है वो किसके कारण है, ना समझी के कारण। और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमको समझदारी दो, और ब्राह्मण हर रोज प्रार्थना करता है दियो यो नह, ये न वो दियो यो न प्रचोदया, दियो यो न प्रचोदया, हो भगवान मेरी बुद्धि को तेजस्वी मत बनाना, न प्रचोदया बोल रहा है दियो यो नह प्रचोदया होना चाहिए, नह अस्माकं दिह यह प्रचोदयति प्रेरयति, हमारे सबकी बुद्धि को भगवान आप तेजस्वी बनाए, क्या प्रार्थना है। कौन बनाए, जो सर्वज्ञ है वो मेरी प्रार्थना को जानता भी है और वो प्रार्थना को सफल करने में समर्थ है, क्योंकि सर्वसमर्थ सर्वशक्ति है। संकल्प मात्र से जिसकी सृष्टि हुई है वही परमेश्वर, निधये सर्व विद्यानां विषजे भवरोगिणां। एक रोग हुआ है हमको, वो क्या है, जन्म मृत्यु रूपी रोग। और ये रोग में एक बात, कोई ये नहीं कहता है मैं रोगी हूं और बहुत प्रसन्न हूं, नहीं हो सकता है। जो रोगी होगा वो क्या करता है, सब स्वरों में गाएगा, आ ऊ ई करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तकलीफ है, डिस्कम्फर्ट है। और संसारी जो भी होगा वो क्या होगा, स्वामी जी आपसे बात करना है, मानी बात करना है क्या है, मैं कैसे आनंद स्वरूप प्रसन्न हूं, ये सब कहना है, नहीं महाराज मेरी अभी शादी हुई है और सास के साथ रहना पड़ता है, मैं अपनी सास के घर में जाके रहता हूं, आई एम घर जमाई हूं, बहुत तकलीफ है, लड़की अच्छी है उसकी मां गड़बड़ है, ये क्या हुआ, दुख है। दूसरा दुख यह है कि मेरे मित्र की बढ़ोतरी होती है वो मेरी नहीं होती है, एक जेलसी है ना, बहुत आश्चर्य है। दूसरा सुखी होता है ये देख के मैं दुखी होता हूं, दूसरा ज्यादा पढ़ता है देख के मैं दुखी होता हूं, ये क्या है? जेलसी है, इतना दुख है, सबको दुख है। भव रोग जन्म मृत्यु रूपी दुख, उसकी निवृत्ति के लिए कौन उसका वैद्य है? और वैद्य रोगों के दूर करते हैं, पर भव रोग को दूर करने वाले को दे, भव रोगिणाम विषजे वैद्य है। आपको मालूम होगा भगवान के समुद्र मंथन के समय जितने रत्न के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, उसमें से एक अवतार अंतिम कौन सा था? धन्वंतरी, हाथ में सब औषधि को लेके आए। जो संसार औषधि के लिए उपाय कर सकते हैं, वो भव रोग के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पर एक ही उपाय है, वो भी आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। अर्जुन भी भव रोग से पीड़ित था, तो भगवान ने उसको कितना भी चमत्कार दिखाया विश्वरूप का, उसका भव रोग दूर हुआ? विश्वरूप देख के भी डर गया भगवान, इससे डर लगता है क्योंकि आप मेरे से अलग है तो डर लगता है। एक ही उपाय है, भगवान को भी पढ़ाना पड़ेगा कि तू पूर्ण है। और कोई नान्य पंथा विद्यते नाय, सर्वलोकानाम गुरवे, इस लोक परलोक में जितने हैं इंद्रादि के भी गुरु कौन है? दक्षिणामूर्ति। फिर बोले दक्षिणामूर्तये नमः, ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ठीक है, मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा आपको समय से। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: बोले वही मैं पेड़ के ऊपर रहती थी मैं, कोई लकड़हारे कोई गाय वगैरह चराने वाले लोगों के दृष्टि से बचने के लिए, और दिन भर वो पेड़ पर रहती थी और रात्रि के समय नीचे उतरती, झरने का पानी पीती और फिर जो भी उसको जंगल में कुछ मिल जाता वो खा लेती और भजन करती थी। यह ध्रुव की बात कोई अकेला ध्रुव थोड़ी है, यहां तो तपस्या ऐसी चलती रहती है। वर्षों बाद फिर एकादा कोई भगत मिला उनको, और फिर ये सदगृहस्थ लोग ना, इसलिए धन्य गृहस्थाश्रम बोलते हैं, वैसा नहीं बोलते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो और आप लोगों से संन्यास चलता है, आप लोगों से तपस्वी चलते, योगी चलते हैं। एक महात्मा जी बड़े सिद्ध योगी थे, 115 साल की उम्र में घर शरीर छोड़ा उन्होंने, चित्रकूट में प्रमोद वन में तपस्या करते थे, उस समय भयंकर जंगल। तो मैंने पूछा उनको कि आपको भोजन कैसे मिलता, और ये बोले एक सेठ था और वो सेठ पूरे वन में जितने साधु रहते थे सबको अनाज पहुंचाता था, सबको अनाज पहुंचा। 15 दिन में एक बार कोई उसका नौकर आता और महात्माओं से लिख करके ले जाता था कि आपको क्या क्या चाहिए। बोले हमको ये नमक, ये तेल, ये आटा, ये दाल, ये चावल, जितना चाहिए आप लिख देना। और वो 15 दिन के बाद, अब जंगल भयंकर था, नौकर आएगा उतना राशन उनके पास डाल के जाएगा और बताएगा कि शेठ जी ने आपको प्रणाम बताया, करो तपस्या। आप जहां कहीं भी ऐसा होता है ना, तो आप लोग सेवा करते हैं और वो तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, ये संयोग है। तो उस माया ने सुनाया कि एक व्यक्ति आता था और वो भी 8 दिन में एक बार आता और मुझे कुछ ना कुछ दे के चला जाता था। वो भी गरीब बेचारा, कभी आटा छोड़ जाए, कभी कुछ चावल छोड़ जाए कुछ, और फिर वो खाती थी। उन्होंने 12 वर्ष तक वहां तपस्या की, 12 वर्ष तक। और मैं आपको बताऊं उस माता के पास सारी अनुभूतियां थी जो आपकी गीता में लिखा हुआ है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं था। उसको ये नहीं मालूम था किसको कुंडलिनी बोलते हैं, ऐसा नहीं मालूम था। इसको आत्मज्ञान बोलते हैं, इसको साक्षात्कार बोलते हैं, ये उनको नहीं मालूम था। उनके पास अनुभूतियां थी, केवल अनुभूतियां। जब वो सुना रही थी तो उन्होंने सुनाया कि महाराज मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में प्रकाश ही प्रकाश, जब मेरे वस्त्र देखे ना तो उन्होंने कहा कि यही वस्त्र तो मैंने ध्यान में देखा है, बोले मुझे नहीं मालूम था कि ये सन्यासी ऐसे होते हैं। तो उन्होंने सुनाया कि महाराज हमने सुना देखा कि लाल कपड़े वाले हजारों महात्मा है, हजारों महात्मा, और वो पहाड़ पूरा भरा पड़ा है हजारों महात्मा, सिर पर ऐसे जटा है, ऊपर रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है, ये माला है ये माला है, वो घूम रहे विचरण कर रहे साधु महात्मा, वैसे देखती थी ध्यान की अवस्था में। उन्होंने सुना अवधू दत्तात्रेय के दर्शन हुए उनको, वो बता रहे थे कि अनंत सूर्य मुझे दिख रहे थे महाराज मेरे दिमाग में, ऐसा बोल रहे थे गांव की भाषा, बोलते मेरे दिमाग में अनंत सूर्य, बोले जिधर देखूं उधर पृथ्वियां घूम रही हैं, अनंत तारांग नक्षत्र घूम रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मैं उसके अंदर पड़ी हूं, मैं सब जगह पर घूम रही हूं, ऐसा। वो आपकी सारी अनुभूतियां थी, उसके पास गीता का श्लोक नहीं बोल रहे थे लेकिन वो सारी अनुभूतियां उसके अंदर थी। तो नारायण आपके यहां कैसे अद्भुत अद्भुत लोग हैं, अद्भुत आदमी। जब वो संकल्प लेकर के चल पड़ी साधना करने के लिए तो आशा ही तो थी ना। और आपके जो जनाबाई हैं ये साधना करने के लिए निकल पड़ी वैसा ही थी, आपकी शबरी साधना करने के लिए निकल पड़ी बिल्कुल साधना के प्रारंभ में ऐसी अद्भुत तो उनके मन में आशा परमात्मा का भाव है कि मुझे परमात्मा को पाना है, गुरु के पास गई और उन्हें गुरु के पास जा करके साधना की, गुरु की सेवा की, महामंत्र मिला, वो आशा है, आशा है वो। और जब मतंग ऋषि जब जाने लगे तो जाते समय मतंग ऋषि ने क्या बोला था, जब उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं अब मैं क्या करूं, मेरी साधना सफल कैसी होगी, उन्होंने कहा कि भगवान राम आएंगे तुमको मिलेंगे, पहले आशा थी। और जब मतंग ऋषि ने गुरु ने कहा कि भगवान तुम्हारी कुटिया में आएंगे, वो आशा किस में बदल गई, अब प्रतीक्षा में बदल गई, वे प्रतीक्षा है। अब निश्चित है कि भगवान राम आएंगे क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे गुरु ने बोला हो और ना हो, इतना विश्वास। और वो उनकी आशा प्रतीक्षा में बदल गई। और जब भगवान श्री राम सामने आ गए तो फल मिला सुंदरताम, पहले आशा फिर प्रतीक्षा, और जब साक्षात भगवान श्री राम सामने खड़े हो गए तो क्या हो गया, फिर फल मिला, साक्षात प्रभु सामने है। ये तीन चीजें आचार्य यम रख रहे हैं, आशा प्रतीक्षा और फल सुंदरता। और ये तीनों चीजों का संवर्धन होता है जब आप अतिथि की सेवा करते हैं। बस यहां यही कहना है आचार्य यम को कि आप जब सेवा करते हैं, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, अपने से वृद्ध जनों की सेवा, तो आपके जीवन में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, आशा प्रतीक्षा में बदल जाती हैं और प्रतीक्षा फल में। और यदि आप ये नहीं करते हैं ना तो ये तीनों चीजें फिर विंगते नष्ट हो जाती हैं। और ये सुना करके सबके मन में आतिथ्य भाव जागृत करा दिया और फिर आचार्य यम बालक नचिकेता की तरफ आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के आज बालक नचिकेता को वर दे रहे हैं, तीन वर दे रहे हैं। तीसरो रात्रिर यद अवात्सिर गृह में अनश्नन ब्रह्मन अतिथिर नमस्या त्रीन वरान वृणिष्व। बड़े ही उदार भाव से वो कहते हैं तीसरो रात्रि ही यत अवात्सि ही गृह में, तीन रात्रियों तक मेरे घर में आपने निवास किया। और कैसे निवास किया, अनश्नन ब्राह्मण अतिथिर नमस्य, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो, आप अतिथि रूप में ब्राह्मण और तीन दिन तक मेरे घर पर निवास किए, इसलिए तीन वरों को आप ग्रहण करो, तीन वर मांगो। आप यहां तीसरो रात्रि ही बोल रहे हैं, यहां दिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात तो एक ही है ना, तीन दिन कहो या तीन रात्रि को, बात तो एक ही है। इनको यह बोलना चाहिए था कि तीन दिन आपने मेरे घर पर निवास किया, लेकिन दिन का उल्लेख नहीं कर रात्रि, क्योंकि तो नारायण रात्रि और दिन में अंतर है, दिन और रात्रि में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आप दिन में हैं, दूर की चीज भी आपको नजदीक मालूम पड़ती है, आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, और आप रात में हैं तो बहुत निकट की चीज भी आपको दूर मालूम पड़ती है। अब यहां मुंबई में आप दिन में बैठे हैं और आपको कोई बोले कि जाओ बोरीवली, दिन में है ना, तो आप जाएंगे क्योंकि आपको लगा अरे ये तो नजदीक है, गया आया। और रात्रि 12 बजे आपको कोई बोले कि भैया जाओ, तो अरे भैया इतना दूर, आपको चौपाटी भी ज्यादा दूर मालूम पड़ेगी। अभी आपको चौपाटी इतना नजदीक लग रही ना दिन में, और रात में 12 बजे बोले कि जाओ चौपाटी, तो अरे इतना दूर, माने आपको रात्रि के समय नजदीक की चीजें भी दूर मालूम पड़ती है, और दिन में कितना भी दूर हो तो आपको निकट मालूम पड़ता है। ये रात का और दिन का अंतर है। और दिन में आपको अभय होता है, आप दिन में ज्यादा सतर्क रहते कि रात में? आप दिन में कोई सतर्क नहीं रहते, दरवाजा बंद कर न करना भी कोई जरूरी नहीं है, करना न करना ठीक है, खुला भी रहे तो कोई बात नहीं है। दिन में भी यदि कुंडी न लगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन रात्रि के समय जब आप रात हो जाती है तो आप अपनी कुंडलियां लगाना नहीं भूलते, सोते समय चौकीदार को बोलेंगे भैया सावधान आओ दरवाजा, आप कुंडली देख लेते हैं, दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको भय, इसलिए रात्रि का मतलब होता है राति भयम इति रात्रि। हाँ, रात्रि का ही मतलब होता है जो आपको भय देती है, भय आपके जीवन में भय निर्मित करती है, इसलिए आपके लिए दिन कष्टपूर्ण नहीं है, आपके लिए रात कष्टपूर्ण है। इसलिए आदमी बोलता भी है अरे भाई दिन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन रात में तो आराम की जरूरत है, रात में तो रहने, दिन तो ऐसे कटा लेंगे लेकिन रात में क्या होगा। हाँ, रात आपके लिए महत्वपूर्ण है दिन की अपेक्षा, और यही भाव है। यहां आचार्य यम कह रहे भैया तुम दिन में रहे होते तो बात अलग है, तुमने तीन रात्रियां काटी हैं, तीन रात्रियां, और दिन में आप दिन भर बैठे हुए निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात में आपने बैठे हुए निकाला है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये बात आपका निवास करना ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, आप दिन दिन में आते और रह के चले जाते और रात में सोते तो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए तीसरो रात्रि ही आवासी गृह में, तीन रात्रियों तक जो कठिनतम रात्रियां आपने निवास की हैं, इसीलिए मैं आपको एक रात्रि के बदले एक वर, तीन वर मैं आपको प्रदान करता हूं, मांगो आप तीन वर। आप वहां बालक नचिकेता गए थे लेने की देने के लिए, बालक नचिकेता लेने के लिए थोड़ी गए थे वहां, आज बालक नचिकेता वहां स्वयं को देने के लिए गए हैं, लेकिन आचार्य यम ने इनकार कर दिया, बोले नहीं तुमको कौन लेगा, आप लेगा भी तो कौन संभालेगा कौन, इतनी उच्च कोटि की चीज नहीं है, और ये यहां के लिए नहीं, ये धरा के लिए है, ये पृथ्वी तत्व लोक के उद्धार के लिए। और उन्होंने इशारा कर दिया कि भैया अब तुमको नमस्कार करने का समय, जाओ बोले, तुम्हारा मरने का समय नहीं हुआ है अभी। यदि मरने का समय ना हो तो साक्षात मृत्यु भी आपको ले नहीं सकती, और यदि मरने का समय आ गया तो साक्षात मृत्यु भी आके आपको बचा नहीं सकती। बालक नचिकेता को आचार्य यम ने कहा अब तुमको तो जाना ही है, लेकिन जाने के पहले तुम तीन वर ले लो जिससे मेरे द्वारा जो अपराध हुआ अनजाने में उसका प्रक्षालन हो सके। बालक नचिकेता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बालक नचिकेता ने अब वर मांगे हैं। बालक नचिकेता ने वर मांगे, मांग जो आपके भीतर है ना, मांग का जो क्रम है आपके भीतर का, ये क्रम भी आपके जीवन को महत्वपूर्ण बना देता है। आपके होने की सूचना आपकी मांग है, आप क्या चाहते हैं। आपका होना वही होता है जो आप चाहते हैं। वास्तविक आप चाहते क्या है, आप निर्णय करो आप। और आप जो चाहते हैं ना वही आप हैं। आप राग चाहते हैं तो आप रागी हैं, और आप द्वेष चाहते हैं तो द्वेषी हैं। आप धर्म चाहते हैं तो आप धार्मिक हैं, और अधर्म चाहते हैं तो आपकी चाह में आपका होना है। आप सत्संग चाहते हैं तो आप क्या है, सत्संगी हैं, और आप कुसंग चाहते हैं तो आप कुसंगी हैं। आप ब्रह्म को चाहते हैं तो आप जिज्ञासु हैं, और आप भगवान को चाहते हैं तो आप भक्त हैं। आप चित्तवृत्ति के निरोध को चाहते हैं तो योगी हैं। आप कर्म करना चाहते हैं तो आप कर्मी हैं। तो आपकी चाह में ही आपका होना छिपा हुआ है। अब यहां पर भी चाह प्रकट कर रहे हैं बालक नचिकेता, और उनके सामने चाह को प्रस्तुत करते हैं आचार्य यम। चाहो तुमको क्या चाहिए, और वो तीन वर है। और ये तीन वरों का जो क्रम है ना, मांगने का क्रम बड़ा अद्भुत, मैं आपको आज ही सुना देता हूं ये संक्षेप में, उसकी व्याख्या बाद में करूंगा। जब तीन वर मांगने के लिए कहा तो पहला वर का क्या मांग है, आप कठोपनिषद से तो कई बार सुन चुके हो, मुझे मालूम है, यहां कोई नई बात बोली नहीं जाती है। प्रेमपुरी आश्रम में इतना उच्च कोटि का और श्रोता इतने सजग सुबुद्ध बहुश्रुत है, यहां कोई नई बात कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। हम कितना भी कोशिश करके कोई नई बात नहीं बोल सकते। जब हम कोई बात बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पहले हमको सुना दी गई है, इतनी बार सुन चुके हैं। आपने सुना इसमें पहला वर क्या मांगा है, आप अपनी वासना को आगे रखते हैं कि आप दूसरे की, आप स्वार्थ में हैं कि आप निस्वार्थ में। यहां बालक नचिकेता ने जो मांगा ना तीन बार, तो सबसे पहले क्या मांगा उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने पिता के लिए मांगा है वर, सबसे पहले उन्होंने पिता के लिए वर मांगा। क्या शांतः सुमनसा यथा स्यात्। सबसे पहले उन्होंने अपने पितृ कर्तव्य, उनको मालूम है पिता ने मुझे क्रोध वशात बोल तो दिया है, मृतवित्वाम ददा, मर जाओ। माता पिता बोलते हैं ना, ऐसा गुस्से में आ गई, कई बार अपने माता पिता भी बोलते मर जाओ, बोलते नहीं क्या, थप्पड़ भी मारते। माँ बोलती भी है और फिर छाती में चिपकाती, मैंने मर जाओ बोला, थप्पड़ भी मारती है, अरे हमने बोला हमने बोला, समझ में। आज बालक नचिकेता सोच रहे हैं आचार्य यम के सामने, अब हम तो यहां आए और लेकिन पिताजी घर में, अब उनकी नींद हराम है, सो नहीं पा रहे। आज कितना, चौथा दिन है ना, आज बालक नचिकेता के मृत्यु का कितना दिन है, पिता से वियोग हुआ कितने दिन हुए, मेरे तीन रात्रि तो ये बीत गई, चौथी शुरू हो गई ना। अब अन्ना हजारे का अनशन 11वें दिन पहुंच गया ना, 12वें दिन, बड़ा बहादुर आदमी भाई सचमुच। बड़ा बहादुर, हम लोग तो 12 दिन यदि हम लोग अनशन करें तो हम लोग 13वीं करनी पड़ेगी। हम लोग 12 दिन तक अनशन कर ले तो 13वें दिन पर रहेंगे कि सीधी 13वीं। बड़ा स्ट्रांग आदमी सचमुच, 12 दिन तक बिना खाए, नवरात्रियों में एक दिन निर्जला एकादशी करना मुश्किल हो जाता है एक दिन। हमारे एक महात्मा जी थे आश्रम में, भक्तमाली जी, और पूरे आश्रम में केवल एक महात्मा था जो निर्जल एकादशी करता था। गर्मी के दिन आती निर्जला एकादशी, गर्मी भीषण गर्मी, और वह आप यहां करोगे तो कुछ आराम मिले, एयर कंडीशन है, खुली हवाएं, लेकिन वृंदावन में भयंकर गर्मी, और एकमात्र निर्जला मैंने पूरे दिन भर कुछ जल भी नहीं लिया, अन्न की बात ही छोड़ो, निर्जला। हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते, वाह कमाल, एक निर्जला रहते। और ये बहादुर देखो 15 दिन तक पानी पर है और फिर भी दहाड़ रहा है, बोला और 12 दिन हुए और उसके बाद भी वो क्या कर, हमारे सामने घटना है, ये इतिहास में चली जाएगी घटना, लोग बोलेंगे 12 दिन तक बिना अन्न खाए कैसे रहा होगा, अरे ऐसे लिखा होगा, जो बाद में तो यही कल्पना करेंगे। इतिहास की अद्भुत घटना हमारे सामने घट रही है, अद्भुत है ना। आज 3रा दिन पूरा हो गया है, आचार्य यम के पास पहुंच गए बालक नचिकेता, 4था दिन चालू है, मरे 3 दिन हो गए, अब पिता की क्या हालत होगी घर में, अरे यज्ञ तो पूरा हो गया, उस दक्षिणा देते समय यज्ञ तो उसी दिन पूरा हो गया, जिस दिन बालक नचिकेता ने देह त्याग किया मर गए, आचार्य यम के पास आए उसी दिन यज्ञ पूरा हुआ, आज 4था दिन है और बालक नचिकेता क्या सोच रहे हैं, ओहो हो मेरे पिताजी कितने दुखी हैं, रात रात में सो नहीं रहे होंगे मेरे लिए, बोल तो दिया था। अब सबसे पहले उन्होंने अपने को मांगा, देखो वही अपने पिता के लिए मांगा, बोले शांत सुमनसा यथा स्यात वीत मन्यु हूं, मेरे पिताजी शांत हो जाए, शांत शांत और सुमनसा यथा सुमनसा स्यात, उनका मन भी सुमन हो जाए, मन क्या बन जाए, क्यों वीत मन्यु हूं, अरे बड़े क्रोधी हैं वो, हाँ मेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं और क्रोधी न होते तो ये मृत्यु धाम जैसा भी क्यों बोलते, गुस्से में तो बोला था, मेरे पिताजी वीत मन्यु हूं, मन्यु माने क्रोध होता है, विगत मन्यु हूं, मेरे पिताजी विगत मन्यु माने क्रोध रहित हो जाए, जिसके कारण इतनी बड़ी आपत्ति आई उनके ऊपर और उनका मन वीत मन्यु बनकर क्रोध रहित होकर के सुमन हो जाए, सुमन हा? और ये हमारे मन के सुमन को नष्ट करने वाला क्रोध ही है, मन तो हमारा सुमन है ही, कुसुम की तरह आपका हृदय सचमुच कितना कोमल है, कितना पवित्र, कितना सुंदर है, लेकिन जब बाहरी चीजें जब आ जाती है अंदर, कांटे कंकर, ये क्रोध लोभ कामना मद, ये तो हमारे मन को फिर ये नष्ट कर देता है, इसलिए शांत शांत हो जाए, क्रोध से रहित हो जाए और मेरे पिताजी का मन सुमन हो जाए, सबसे पहला वर मांगा। और उन्होंने ये भी कहा माम अभिवदेत माम प्रतीत, जब आपके द्वारा मैं भेजा जाऊं, देखो यही विशेष बात, इसका मतलब कि आचार्य हमने पहले ही बोल दिया था कि बेटा तुम अपने माता पिता के पास चले जाओ, माम अभिवदेत, जब आपके द्वारा भेजा जाऊं मैं पिता के घर, जब पिता के सामने जाऊं तो कहीं पिताजी मुझे ये न बोले कि ये तो कौन भूत प्रेत आ गया, आप 4था दिन है भाई, और आपके द्वारा भेजा हुआ मैं गया पिता के सामने और जाके प्रणाम करूं मैं कि मैं आ गया पिताजी, तो क्या सोचेंगे पिताजी, क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे तो भूत बन के आया है, तो फिर गले मिलेंगे कि नहीं, बड़ी गहरी बात बोली देवेंद्र। मान लो कि हम किसी से बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, एक क्षण भी हम उसके बिना नहीं जीते, और मरने के बाद ऐसा अनुभव कर रहे थे कि उसी के साथ हम भी मर जाते तो अच्छा, 3रे दिन रात्रि के समय वो व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप उसका स्वागत करोगे कि नहीं, आप गले मिलोगे क्या, आप लाइट चालू करेंगे, भैया ये क्या हो गया, कौन आया कमरे में, भूत,

0: वही है जो गया था, और पुनर्शरीर जैसा का वैसा बना के आप भेजेंगे, जैसा का वैसा माने किसी भी प्रकार वहां क्षति ना हो। एक वर में उन्होंने बहुत सारी चीजें मांग ली, बहुत सारी चीजें आप जब भेजेंगे तो किसी प्रकार की भी कोई व्यावहारिक कोई क्षति ना हो मुझे, और माम अभिवदेत, मेरे से बात भी करे वो, मेरे से प्रेम से बात भी करे, स्वीकार भी करेगी, मेरा बेटा है। ये उन्होंने अपने पिता के लिए मांगा, पहला जो वर मांगा है ना वो अपने पिता के लिए मांगा, माने अपना स्वार्थ नहीं रखा उन्होंने, अपने पिता का। यदि हम लोग होते तो कल एक किसी का फोन आया और वो थोड़ा ओवर स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं, उम्र भी कम है। मैंने पूछा क्या हुआ भैया, सब ठीक ठाक हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, पिताजी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं मस्त मस्ती में रहता हूं, बोले मेरी नींद वूत बराबर है। मैंने कहा कारण? अरे बोले मैं स्पिरिचुअल हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, ये आपके लिए ठीक है, आप सत्संग करते हैं, आध्यात्मिक ब्रह्मज्ञानी हो गए आप, वो तो आपकी दृष्टि है, और वो आपकी दृष्टि आप तक दुखों को पहुंचने नहीं देती है, लेकिन तुम ध्यान रखो कि वो तुम्हारे पिता है, उसको मदद करनी चाहिए। आप ब्रह्मज्ञानी बने इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप हलवा बैठ के खाए और आपके घर में बेटा मर गया है और बोले कि भाई हाँ हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं। एक बड़ी बात, एक महात्मा जी वृंदावन में अक्सर कहते हैं, अपने लिए ज्ञान और दूसरे के लिए करुणा, ये ध्यान देना, बड़ा अद्भुत बात बोलते हैं, अपने लिए ज्ञान और दूसरे के लिए करुणा, ये वास्तविक ये दैवी वेदांत है, और अपने लिए करुणा और दूसरे के लिए ज्ञान ये असुरी वेदांत है। असुरी वेदांत में क्या, जैसे कोई मान लो सामने वाला बोला कि हमारा सिर दर्द दुख कर रहा है, और उस समय आप क्या कहते हो, सामने वाले ने बोला सिर दर्द, तो आप क्या बोलोगे, अरे यहां तो सिर है ही नहीं तो कहां से दर्द करेगा। वेदांत में आजातवाद, वेदांत में न जायते कश्चित जीवः, यहां कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, अजातवाद, स्वप्न है, सिर ही नहीं तो दर्द कहां से होगा, समझ गए कि नहीं। आप ब्रह्मज्ञान का उपदेश कर रहे हैं उस समय, और जब आपका सिर दर्द करता है तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा सिर लगाओ, डॉक्टर बुलाओ, दवा दो, ये करो, मैं अपने लिए दया और दूसरे के लिए। वहां हिरण्यकश्यपु ने भी यही कहा है, वो ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया, जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के लोगों को वेदांत का उपदेश किया है, और जब स्वयं पर पड़ी तो तपस्या करने के लिए गया, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा कि मैं कभी न मरूं। अरे भैया अभी ज्ञान का उपदेश किया है, आत्मा अजर अमर है, और तपस्या करने के लिए बैठ रहा है, उद्देश्य क्या है, मैं अजर हो जाऊं, यासुरी वेदांत है। इसलिए अपने लिए दया नहीं, अपने लिए ज्ञान और दूसरे के लिए, जब दूसरे के ऊपर पड़े आ पड़े कोई कष्ट की बात, वहां मदद करो, दया करुणा सब, और अपने ऊपर यदि आ जाए तो ज्ञान। वहां आपका सिर दर्द करे तो आप अपने मन को समझा देना, यहां सिर ही नहीं है, दर्द कहां से होगा, यहां हाथ पैर है नहीं, यहां शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम, ये दैवी दैवी वेदांत है। इसलिए बालक नचिकेता से सीखने जैसी बात है, इन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता का कर्तव्य, परिवार का कर्तव्य निभाया, और उन्हें अपने पिता के लिए मांगा, और दूसरे वर के रूप में उन्होंने समाज के लिए मांगा है, और तीसरे वर में उन्होंने अपने लिए, माने अपना स्वार्थ तीसरे नंबर पर और परिवार का स्वार्थ, ये सीखने जैसी बात, और ये मांग ही सिद्ध करते हैं कि बालक नचिकेता का जीवन, उनका सोच कितना ऊंचा था, और इसीलिए आज बालक नचिकेता के ऊपर हम प्रवचन सुन रहे हैं, इतने महान बालक। आज यही विराम देते हैं, दो मिनट के लिए सीधे बैठ जाए, एक माला हम लोग जप करते हैं प्रतिदिन की भांति, सीधे बैठ जाएंगे।
1: हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio.

ूढ़ास्तौरेजासमे भविष्ठा भुवना निजस्थे पालके तुभ्यंता अंगिस्तमिश्वासुक्षित पृथक अग्ने कामे अश्यामतं कामेत भोस्यामूर सुवीर अश्यामवाजमिवाजयंत।